0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Bhai, mummy papa ki tabiyat ki bahut tension rehti hai yaar. Hum yahan Brisbane mein aur wo India mein akele hain.
3: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

बाकी से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

पढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: कुछ बातें कहे जाने के लिए नहीं होती, वो गाई जाती हैं, और जब वो गाई जाती हैं तो कव्वाली बन जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार सागर में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602 or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है. शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट. सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन. ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट. होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी. टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156. आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.brisvani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं. दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026. Event proudly supported by the City of Moreton Bay.

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701।
1: आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। हमारे स्टूडियोज में ठीक एक बज चुके हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सस्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701 हमारे स्टूडियोस में। एक मिनट हो गए हैं ब्रिस्बेन टाइम 1:00। जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का रेडियो विजवानी AM से, जिसे आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से।

सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ, आई एम सू ऑन रेडियो विस्पानी आई एम. अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक दोस्तों साथ है हमारा आपका. तो पता है इस प्रोग्राम का नाम आज है शनिवार मस्ती म्यूजिक. तो इस प्रोग्राम में आप बहुत सारे से मस्ती भरे गीते हमारे साथ सुन सकते हैं. इसके साथ साथ अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, आज आपकी जन्मदिन है, कुछ भी खुशी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे से बधाई हमारी तरफ से. आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल वीकेंड आउट देयर.

ऐसा लग रहा है आज के पहाड़ों से गिरता झरना जैसे कोई गीत सुनाए। सुबह सुबह की ठंडी हवा आप सभी को दिल को लहराए। ऐसा ही सुकून भरो कि आपकी हर सुबह आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर लाए। हैप्पी वीकेंड एवरीवन।

हम सभी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली है क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी ब्लेसिंग मंथ फॉर एवरीवन। हमारे हिंदू लोगों के लिए बहुत सारी से ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। जगह जगह पर पूजा शुरू हो रही है, नवरात्रि है, उसके बाद दीपावली है। आज आप सभी को याद करते हुए नवरात्रि के बहुत प्यारे से गीत से शेरों वाली माँ को याद कर रहे हैं, बहुत प्यारे से गीत से आप सभी के लिए जो आज रेडियो वृषवाणी सुन रहे हैं।

भातरसा माता रानी पर भजन आपने सुना दोस्तों। माता रानी आप सभी की रक्षा करे, क्योंकि नवरात्रि बहुत ही ब्लेसिंग्स माता रानी लेकर आती हमारे पास, बहुत सारे से पूरे मंथ के लिए इनविटेशन, इनविटेशन के ऊपर इनविटेशन, पता ही नहीं लगता कि किस तरफ जाए। चलते हैं अगला गीत सुनते हैं, और सभी को माता रानी के आने की बहुत ही इंतजार है, इसीलिए अगला गीत आने वाली है मिलन की घड़ी।

0: दोस्त तो फिल्म मिलन से लिया गीत आपने सुना कुमार सानू दोस्तों की आवाज में पर्दे पर जैकी श्रॉफ के लिए बहुत ही पॉपुलर था 90s पर गीत शायद आपको पता होगा आने वाली है मिलन की घड़ी बहुत प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी अगर आपने अभी ट्यून इन किया है स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से और समय की देखा जाए दोस्तों इस वक्त 1:15 बज चुके हैं और साथ ही आज हमारा आपका ठीक 3 बजे तक
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है अ प्लेस टू कॉल होम खोजो
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है ए तुहाडे परिवार अते घर नू तैयार करन दा समा है जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार
0: चलते हैं दोस्तों देखें हमारे पास फरमाइश की लाइन लग चुकी है और हम सबसे पहले आज फरमाइश लेकर आए हैं हमारा प्रोग्राम सुनिए ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए आप माता रानी की एक बहुत प्यारा सा भजन सुनना चाहती है और हमारे पास आज माता रानी की भजन की बहुत ही रिक्वेस्ट आई है चलते हैं सबसे पहले सुनते हैं ललिता जी की पसंद अगला गीत

0: बहुत प्यारे सा दोस्तों माता बच्चन आपने सुना भारतीय झोली शेरों वाली और हमारे साथ शामिल हो गई थी यानी हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम सुन रही है ललिता गौतम ऑल द वे फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: चलते हैं दोस्तों समय की ओर। देखा जाए हमारे स्टूडियो में 22 मिनट हो गए हैं 2:00। आपके अनाउंसर है सू। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं स्वागत है आप सभी का रेडियो विस्पानी एम पर। चलते हैं जैसे मैंने पहले कहा बहुत से लोग हैं जो नवरात्रि का गीत सुनना चाहते हैं आज क्योंकि टुमारो स्टार्ट्स। तो आज अगला नवरात्रि के गीत की फरमाइशी हमारे पास वो भी आई है सैक्रामेंटो यूएसए से जहाँ हमें सुने विजयन और कामिनी नारायण।

0: is Kiko Farmaish Karnevalte Vijay Nokamani from Sacramento, USA.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Madhmeet, one of the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
14: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
12: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
14: ऐसा क्या खास है वहाँ?
12: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
14: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
12: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: और दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो स्कूल की यादें हैं ना, सबसे सुंदर यादें हैं। ये तो बात सही है आप सभी के लिए। सभी का जो मेमोरीज है, जो स्कूल डेज का, दिस ब्यूटीफुल मेमोरीज। और इसी पर हम कुछ कहना चाहते हैं कि स्कूल की जो दोस्ती शायद जिंदगी की सबसे सच्ची होती है। ना कोई मतलब, ना कोई दिखावा, बस एक साथ बैठना, हंसना और छोटी छोटी बातों पर ही लड़ना, कभी होमवर्क शेयर करना तो कभी पनिशमेंट के साथ ही, सब कुछ साथ साथ, सब कुछ साथ साथ में शेयर करते थे। कभी दोस्त फैमिली जैसे बन जाए। आज भले ही सब अपने अपने रास्तों पर है, पर स्कूल की जो यादें हैं ना दोस्तों, और वो दोस्त आज भी दिल के सबसे करीब होते हैं। जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो मेलबर्न में, पिंगला शर्मा, मेरी आज सबसे करीब दोस्त है। बहुत ही यंग डेज, बहुत ही प्राइमरी स्कूल की मेरी दोस्त थी। तो चलते हैं मेलबर्न।

के विजय शर्मा और पिंगला शर्मा, आप दोनों को माता रानी पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करती, बहुत ज्यादा पूजा करती है। आप दोनों के लिए मेलबर्न से विजय शर्मा, पिंगला शर्मा, आप दोनों के लिए अगला गीत सुनते हैं।

0: ज्यादा दोस्तों, इस प्यारा सा माता भजन सॉन्ग में हमारे साथ शामिल हो गए थे माय बेस्ट फ्रेंड पिंगला शर्मा और विजय शर्मा फ्रॉम मेलबर्न।
1: सांसों की माला पे समरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: चलिए दोस्तों, केड्रोन पार्क की ओर बढ़ते हैं और हमारे साथ वहां से हमारा प्रोग्राम सुन रही है जोनी और सविता। आप माता रानी का भजन सुनना चाहती है तो आपके लिए बहुत प्यारा सा

0: यार सब ठीक है।
1: तो इस गीत को फरमाइश करने वाले थे जूनियर सविता फ्रॉम फॉरेस्ट फ्रॉम किडन पार्क।
0: इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: चले हैं दोस्तों ग्रीन एकर सिडनी की ओर और वहां पर हमें सुन रहे हैं हमेशा की तरह ग्रीन एकर सिडनी में रजिन और मालती प्रसाद। अब दोनों के लिए अगला गीत।

0: SOS की फरमाइश करने वाले थे रजिन मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एका सिडनी।
1: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: तो चलते हैं दोस्तों एक बार फिर हम सैक्रामेंटो USA की ओर, जहाँ से बहुत सारे से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और माता की भजन की फरमाइश आई है। विजेन है, कामनी और साथ में है बेटी प्रशा, खुशबू, ग्रैंड डॉटर्स कविया काव्या और साथ में अम्मा अमायला और बेटा रोहन। आप सभी ने फरमाइश किया है लखबीर सिंह की आवाज़ का अगला माता रानी भजन।

0: आपने सुना लखबीर सिंह की आवाज का माता रानी का ब्यूटीफुल भजन, जो मेरे लिस्ट पर ही था, लेकिन इसकी फरमाइश आ गई थी हमारे पास सैक्रामेंटो से, जहाँ मैं सुन रही विजयन कामनी, साथ में है परशा, खुशबू और ग्रैंड डॉटर्स है काव्या, अमाला और साथ में रोहन। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।
1: बिजली का बिल देख कर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स, घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: और हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में ठीक 2 बज चुके हैं. ब्रिस्बेन टाइम आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी 79.1 kHz पर. हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 miles रॉक्स ब्रिस्बेन से. बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड थैंक्स फॉर ऑल योर फीडबैक आउट देयर. और हमारे साथ जुड़ी है फरमाइश आई हमारे पास ड्रूवेल से ललिता शर्मा की ओर से. ललिता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. चलते हैं एंड थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन एज वेल. चलते हैं आपके लिए अगला भजन.

0: are the stories get the information carnivality. I'm Lasing from Chicago.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता. लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज. रिंग करें प्रकाश मेनन को. फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
4: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
0: चलते हैं दोस्तों कैलिफोर्निया USA की ओर. मैक्स प्रसाद बड़ी देर से अपना गीत सुनने के लिए इंतजार है. मैक्स चलते हैं नवरात्रि पर. प्यारा सा गीत आपके लिए सुनते हैं.

0: धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: और मैं इस फील्ड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अभिलाषा, हम आपको भूले नहीं हैं, चलते हैं माता रानी का बचन। आप सुनना चाहती हैं अभिलाषा फ्रॉम मेंस फील्ड, आपके लिए सुनते हैं अगला शेरों वाली माँ पर बहुत प्यारा सा भजन है, इसे मैंने लिया है पहाड़ी एल्बम से।

0: दोस्तों, इस गीत को फरमाइश करने वाले थे हमारे साथ शामिल हो गए थे मेंसफील्ड से अभिलाषा।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: अब दोस्तों, आज आपका हमारा साथ रहेगा ठीक 3 बजे तक। रेडियो विश्वानी AM आप सुन रहे हैं। अगर आपने भी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हमारे साथ ड्राइव पर है, इस वक्त अभी काम से ऑफ होकर जा रही है अपने घर की तरफ, अल्पना जी। अल्पना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हैव अ सेफ ड्राइव। आपकी फरमाइश हम बाद में लेकर आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो अगली फरमाइश हमारे पास मेलबर्न से आई है, और मेलबर्न से किसने फरमाइश किया है? जी हाँ, मेलबर्न में हमें सुन रहे हमेशा की तरह एल्फ्रोड एंड किरण प्रसाद।

0: तो बहुत प्यारा साइज लोफी एल्बम से मैंने लिया था इस भजन को और फरमाइश करने वाले थे अल्फ्रेड किरण प्रसाद फ्रॉम मेलबर्न.
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: तो चलते हैं दोस्तों अगला गीत की ओर बढ़ते हैं. जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारे साथ इस वक्त सफर पर कौन है? जी हाँ, अल्पना जी इस वक्त हमारे साथ सफर पर है. अल्पना, चलते हैं आपके लिए सुनते हैं अगला शेरावाली का माँ का बहुत प्यारा सा भजन.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact प्रेरणा on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: और चलते हैं दोस्तों मेनली वेस्ट की ओर। फरमाइश आई हमारे पास मेनली वेस्ट से, जहां मैं सुन रही हूं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी, आपके लिए बहुत प्यारा सा माता रानी का भजन सुनते हैं।

0: प्यारा सर शेरोवाली का भजन आपने सुना और हमारे साथ शामिल हो गई थी लक्ष्मी फ्रॉम मेनली वेस्ट और जी हाँ साथ साथ में इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गई थी ललिता गौतम जो हमें सुन रही है सैक्रामेंटो यूएसए में।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी।

और प्यारा सब माता रानी का भजन जिसे मैंने लिया था एक बार फिर हिमाचली एल्बम से फरमाइश करने वाली थी सोनिया फ्रॉम जिम्बुम्बा एंड सुजी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। चले दोस्तों आखिरी गीत पर हम पहुंचे हैं। आखिरी गीत की फरमाइश करने वाली है कौन? अल्पना फ्रॉम एट मास प्लान्स।

0: और बहुत प्यारा सा गीत, वेरी फनी सॉन्ग आज जिसे फरमाइश करने वाले थे अल्पना फ्रॉम व्हाइट मास्कुलिन। अल्पना क्या बात है, ये तो मेरी भी लिस्ट पर थी। और मत लोग अगर आप सुन रहे हैं तो दिस इज नॉट माय फॉल्ट, दिस इज अल्पनास फॉल्ट। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा चलने का समय हुआ, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई गॉट अ बिग फीडबैक अगेन हियर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर फीडबैक। आपके फीडबैक बिना तो हम यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते हैं। और चलते चलते यही कहना चाहते हैं कि हमारी अगली मुलाकात है टुमारो संडे 2:30 से, दैट्स ब्रिस्बेन टाइम 2:30 से। आप अपना ख्याल रखें और शायद हम नवरात्रि पर और प्यारे प्यारे गीत आपके लिए लेकर आने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट्स टुमारो। आप सभी को माता रानी आपको ब्लेस करे, हैव अ नाइस ब्लेसिंग वीक। नमस्ते, खुदा हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।
1: यू सेट द गोल एंड Apple.
2: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: वोकल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम. टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co. स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009. प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स. कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेंबर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो दीपावली आ गई है. शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ. सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन. ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट. होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी. टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156. आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं. दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे.

नमस्कार, आदाब, खैर मकदम, कैसे हैं सब? बढ़िया, चकाचक, गजब। हाँ जी, जिंदगी में सब बढ़िया ही बढ़िया होना है, क्योंकि आप हैं ही इतने प्यारे, और जो प्यारे लोग होते हैं उनके साथ कुछ कैसे गड़बड़ हो सकता है। और देखिए, जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं भी बढ़िया था वो भी बढ़िया हो गया है, क्योंकि वीकेंड्स आ गए हैं और 2 दिन कोई चिक चिक नहीं है हमारी जिंदगी में। सब बढ़िया है, जबरदस्त है। बॉस ने फ्राइडे को क्या कहा मैटर नहीं करता है, क्योंकि सैटरडे संडे में जो भी कहा वो भूल जाएगा, एंड मंडे से एक फ्रेश शुरुआत होगी आपकी। लेकिन उस फ्रेश शुरुआत को करने के लिए आपको भी तो फ्रेश होना पड़ेगा ना। नहीं, मैं वो वॉशरूम जाके, रेस्टरूम जाके फ्रेश होने की बात नहीं कर रही हूँ भाई। मेरा मतलब है कि अपने इमोशन से, अपनी फिजिकल बॉडी से, अपने मेंटल पीस को लाते हुए आपको फ्रेश होना पड़ेगा ना। हाँ, जिसके लिए आपको फ्रेश एयर लेनी पड़ेगी, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सताक्षी को सुनना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ऐसे ही नहीं इंसान फ्रेश हो जाता है, तो बहुत वक्त लगता है ना। वो सुबह वाला वक्त नहीं, वो तो जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन लेकिन थकान उतारने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है। वीकेंड इसीलिए 2 दिन के होते हैं। तो चलिए, आपकी थकान को हम भी गायब करने में एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। और वैसे बता दूं आपको कि सैटरडे डिलाइट शुरू हो चुका है। जी हाँ, इतनी सारी बातें करने की मुझे आदत है कि मैं शो का नाम बताना भूल जाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। आप सैटरडे डिलाइट मेरे साथ सुन रहे हैं, और फिर से आज आपके वीकेंड्स पर बहुत ढेर सारी बातें मैं करने वाली हूँ। हम और आप साथ निभाएंगे एक दूसरे का, लेकिन भाई गानों के बिना हमारा सफर अधूरा नहीं लगेगा। तो चलिए गाने एंजॉय करते हैं, और ये अगला ट्रैक आपके लिए है, इसे भी सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रजवाणी 1701 एम पर। तो बताइए कि कैसे कट रहे हैं वीकेंड्स? नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है लाइफ में, और वीकेंड्स आने पर भी कई बार सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार वीकेंड पर भी, मैंने देखा है कई लोग ना काम घर पर ले आते हैं कि ठीक है वीकेंड्स हैं लेकिन क्लाइंट के साथ मीटिंग तो करनी है ना तो करेंगे, बट ये मुझे लगता है कि यार गलत है ना। मतलब छुट्टी का मतलब छुट्टी होना चाहिए, और ये वो वाली छुट्टी नहीं है कि भाई कोई फेस्टिवल टाइम है जो हमने छुट्टी ले ली है, तो हम अपने रिलैक्स होने के लिए, अपनी बॉडी को आराम देने के लिए, है ना, वो उस टेंशन से थोड़ा निकलने के लिए जो हमारे जहन में भरी है, हम वीकेंड्स मनाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वीकेंड पर कोई काम, कोई मीटिंग, कोई डील ना करें आप, और बढ़िया जबरदस्त आपके वीकेंड्स गुजरें। चलिए फिलहाल इसी बात पर एक और ट्रैक को सुनिए मेरे साथ, और सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी पर सैटरडे डिलाइट, और ये अगला ट्रैक आपके लिए।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ।
1: जी, आपके वीकेंड्स को हम आपके लिए और भी खास बना रहे हैं सैटरडे डिलाइट में। और ये वीकेंड जो है ये बहुत ही स्पेशल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यार हमें पता है कि स्ट्रेस बहुत है जिंदगी में, प्रेशर बहुत है जिंदगी में, और ये प्रेशर जितनी जल्दी कम हो जाए उतना अच्छा है। वैसे एक बात बताइए मुझे, मुझे याद आया अभी आपसे बात करते करते, जब प्रेशर की बात करते हैं हम, तो अगर कभी जिंदगी में आपको मौका मिले कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए, है ना, कोई आगे पीछे जानने वाला ना हो कि हम कहाँ गए, तो ये मौका आप लेंगे कि नहीं लेंगे, जरा सोचिए। मैं आपके लिए ये गाना प्ले करती हूँ। वैसे मैं ये बात क्यों कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबकी जिंदगी में बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा टेंशन है, और कभी कभी मन करता है कि यार सब छोड़ के भाग जाएं, ताकि कोई भी ना हो जो हम पर हंस पाए, कोई भी ना हो ऐसा हमारे आसपास जो हमारा मजाक उड़ा पाए। खासकर तब जब आपको बिजनेस में फेलियर्स मिले हों, या फिर कभी होता है ना कि ऑफिस में बॉस भी डांट देता तो लगता है कि यार हम कैसे अपने कलीग्स को फेस करेंगे। हाँ, यस ऑफ कोर्स होता है। और जब आपकी मैरिज अनसक्सेसफुल रही हो, आपका डिवोर्स हो जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए, तो ये कुछ चीजें जिंदगी की ऐसी होती हैं जब हम लोगों को, सोसाइटी को फेस करना नहीं चाहते, हमारा कोई ड्रीम ना पूरा हो पाए, हमारी मेहनत खराब हो जाए। तो मैं ऐसा लगता है कि जितने लोग सोच रहे थे कि ये अनसक्सेसफुल हो, उनकी बात सच हो गई, और फिर हम उनको कैसे फेस करेंगे, अब वो हंसेंगे। इस बात का सोल्यूशन हम और आप तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन जापान के लोगों ने ढूंढ लिया है। जी हाँ, और उनके सोल्यूशन पर आपसे बात होगी आगे, लेकिन फिलहाल वीकेंड्स हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर सैटरडे डिलाइट।

प्यार भरा साथ। जी हाँ, आपके वीकेंड वाला साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर इस वक्त मेरे साथ, और एंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे गाने जो आपको बहुत सुकून पहुंचा रहे हैं। वैसे गानों का भी आपके वीकेंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी हाँ, सुकून तो पहुंचाते ही है, लेकिन सोचिए आप अपने हमसफर के साथ अगर डेट पे गए हैं या फिर उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वहां पर आपको ये गाने जो है ये आपके वक्त को हसीन बनाने का काम करते हैं, आपके उस टाइम को आपके लिए और आपके लाइफ पार्टनर के लिए, आपके हम सफर के लिए बहुत ही स्पेशल बना देते हैं ना। तो गानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, आपके हर एक वक्त में आपके मूड को तो अपलिफ्ट करते ही हैं, चेंज करते ही हैं, लेकिन आपके क्वालिटी टाइम को भी और रोमांटिक बना देते हैं। और ऐसे ही रोमांटिक वक्त के नाम है ये अगला ट्रैक भी, इसे एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, सताक्षी आपके साथ है।

सताक्षी के साथ ये साथ है सैटरडे का। जी हाँ, ये साथ है आपके वीकेंड का, जिसमें आप हमारे साथ अपने इस क्वालिटी टाइम को, अपने इस कीमती वक्त को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ऐसा टाइम दे जो आपके लिए यादगार बन जाए। वो एनर्जी जो कुछ वक्त हमारे साथ आप रहकर गुजारे, वो आपके लिए पूरे हफ्ते की एनर्जी बन जाए और उस एनर्जी के साथ आप रिफ्रेश हो जाए। जानती हूँ, मानती हूँ, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी कह रही थी, कि बहुत सारे काम वीकेंड पर भी पेंडिंग होते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि वीकेंड्स आते हैं, कब कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है, और वो काम जो पेंडिंग छोड़े थे या जो हैं हमारे वीकेंड वाले, रेगुलर वर्क भी है हमारा, हम उसको ही करते रहते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा अब कल मंडे है, कल वापस शुरुआत करनी है काम की। तो हाँ, ऐसा होता है, लेकिन कम से कम इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि इस वक्त को खास बनाएं, स्पेशल बनाएं, चाहे कुछ वक्त ही सही लेकिन स्पेशल बने हमारे लिए, और हम इस एनर्जी के साथ, अपनों के प्यार के साथ एक नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए खुद को रेडी कर सकें। और उसी वक्त के नाम है ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे भी और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, ओनली ऑन रेडियो प्रस्थानी 1701 AM।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM पर, और सैटरडे डिलाइट में आपके साथ ढेरों ढेर बातें हो रही हैं हमारी, और ये जो ट्रैक्स हैं हमारे एकदम मूड को रिलैक्स कर देने वाले ट्रैक्स, ये भी आपको जरूर अच्छे लग रहे होंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सताक्षी बड़ा प्रेशर की बात कर रही है, डिप्रेशन की बात कर रही है, लोगों के हंसने की बात कर रही है, तो क्या बात है जो ये करना चाहती है। ऑफकोर्स आपके साथ बांटूंगी, शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल एक ट्रैक को सुनिए मेरे साथ एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM।

मैं ये कह रही थी कि जापान के लोगों ने एक तरीका ढूंढ निकाला है कि उन्हें हार के बाद, अनसक्सेसफुल होने के बाद किसी भी फील्ड में जिंदगी के लोगों को फेस ना करना पड़े, उस सोसाइटी को फेस ना करना पड़े, और इसलिए वो रातों रात गायब हो रहे हैं। जी हाँ, ये टर्म सुनने में अजीब लग सकता है, आप सोचेंगे कहाँ गायब हो रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये बन रहे हैं जोहात्सु। अब जोहात्सु क्या होता है आप जरूर जानना चाहेंगे। बेसिकली जोहात्सु जो है वो वाष्पीकरण कहलाता है, जैसे पानी नहीं भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक वैसे ही ये लोग भी रातों रात गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं मतलब कोई जादू शक्ति है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली नाइट मूवर्स नाम की कंपनीज हैं जो इनको बिना इनके रिलेटिव्स को, परिवार वालों को बताए, बिना कोई निशान छोड़े इनके गायब होने में मदद कर रही हैं, और इन्हें एक ऐसी जगह ले जाकर रखते हैं जहां पर इनकी पहचान सबसे छुपी रहती है। इनफैक्ट इनको नई आइडेंटिटी देने में भी ये कंपनीज हेल्प करती हैं। क्या हुआ, इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ, तो इंटरेस्ट आना तो बनता है बॉस, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि काश के हम गायब हो सकते, लेकिन अभी आपको गायब होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई रूल अभी तक या ऐसी कोई कंपनी अभी तक नहीं है। सो आप चिल करिए और इस गाने को सुनिए। Keep listening to Radio Brisbane, एंजॉय करते रहिए सताक्षी के साथ Saturday Delight।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर. आपके वीकेंड्स को आपके लिए खास स्पेशल बनाने की हमारी कोशिश जो धीरे धीरे हर हफ्ते रंग ला रही है, और आप भी अब सुकून ढूंढने के लिए रेडियो ब्रिस्वानी का इंतजार करने लगे हैं और इंतजार करने लगे हैं सताक्षी के साथ और सैटरडे डिलाइट का, ये हम जानते हैं. कहते हैं अगर कोई एतबार करे तो उस एतबार को निभाने के लिए अपनी जान लगा देनी चाहिए. तो यकीन मानिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भरोसा हम पर कर रहे हैं कि आपका सुकून आपको लौटाएंगे और आपके वीकेंड्स को खास बनाएंगे, ये भरोसा हम हर हफ्ते और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो आप हमें प्यार दे रहे हैं हम उसके बदले में आपको कुछ तो दे सकें. आई होप कि जरूर मैं सफल हो रही हूँ इस बात पर. तो चलिए इसी भरोसे के नाम फिलहाल एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक. स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, एंजॉय करते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट.

बात कहनी थी आपसे, इनफैक्ट एक रिमाइंडर देना था आपको, और वो रिमाइंडर ये है जनाब कि आप बेस्ट काम कर रहे हैं, दुनिया का बेस्ट काम आप जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट है, और सिर्फ काम ही नहीं, आप खुद भी बेस्ट हैं। पता है प्रॉब्लम कब होती है? जब हम बेस्ट नहीं, हम परफेक्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है ना परफेक्ट बनने की, क्यों बनना है परफेक्ट? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट है ही नहीं, तो हमें क्यों बनने का ट्राई ही करना है? हम बेस्ट ही सही हैं, और आप भी यही याद रखिए कि आप बेस्ट ही सही हैं। नहीं चाहिए ऐसा परफेक्शन जो सुकून छीन ले। हम तो अपने लिए जैसे भी हैं, अपनों के लिए जैसे भी हैं, बेस्ट हैं, है ना? और हमारे इसी बेस्ट वर्जन के नाम है ये अगला ट्रैक, इसे सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: Saturday delight, जी हाँ, Saturday का ये खूबसूरत साथ आप enjoy करें सताक्षी के साथ Radio Brisbane 1701 AM पर. और इस साथ के साथ आपके साथ ढेरों ढेर बातें हो रही हैं और हम आप अपने वीकेंड्स को और भी खास बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. तो मेरा आपके साथ ये जो एंजॉयमेंट है ये आगे भी जारी रहेगा. फिलहाल आगे बढ़ती हूँ एक और ट्रैक के साथ. अभी स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिसवानी, सुनते रहिए मेरे साथ सैटरडे डिलाइट.

दोस्तों, यू नो व्हाट, मुझे लगता है जोहात्सु बनने का एक जबरदस्त फायदा भी है. नहीं यूं तो मैं यही कहूंगी कि ये सब करने की जरूरत नहीं है यार. मतलब सोसाइटी में लोग किसी को कितने दिन ही याद रखते हैं. कुछ नया होता है, पुराना भूल जाते हैं, तो उसके डर से सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देना, दिस इज नॉट फेयर. बट आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जुहात्सु होना अच्छा है ना. खासकर वो जो अपनी बीवी से बड़ा परेशान है, उन्हें लगता होगा यार सब कुछ छोड़ के भाग जाए रातों रात, और कोई पहचान हमारी ना रहे, कोई आइडेंटिटी हमारी ना रहे, कोई हमारे पास फोन ना आए, कोई मेल ना आए, सब कुछ खत्म हो जाए और बस हम हो, हमारी तन्हाई हो, और जिंदगी का जोश हो, जज्बा हो हमारे साथ में, और कुछ नया जो हम सोचते हैं कि यार करेंगे लेकिन जिम्मेदारियों के चलते नहीं कर पाते हैं, वो हम करें. हाँ, ये सब अगर आप सोच रहे हैं तो मैं कह दूं कि फिलहाल ऐसा कुछ जुहात्सु बनकर तो नहीं होने वाला, क्योंकि अभी हम, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम लोगों की कंट्रीज में भी ऐसा कोई रूल नहीं है. बट जापान में, क्योंकि लोग काफी एडवांस है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो उन्होंने ये जो तरीका खोजा ये एकदम नया, और उनके हिसाब से मुझे लगता है जो सब कुछ छोड़कर एकदम अलग लाइफ बिताना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया भी है. क्योंकि भाई सुसाइड ना करो और अपनी अलग जिंदगी शुरू कर लो, वो ज्यादा बेटर है. नहीं तो फिलहाल चलिए इसी जो हादसों के नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक. स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी आपके साथ.

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: सुदाक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट अब एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। तो ये बताइए कि कैसे कट रहे हैं वीकेंड्स? जी हाँ, क्योंकि वीकेंड जो है वो हमेशा अच्छे कटे ये जरूरी नहीं है। अब हर तरह की जिंदगी है, हर तरह के लोग मिलते हैं हमसे, तो वीकेंड्स भी मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सब्जी लेने भी मार्केट जाएं तो आपको कुछ ऐसा कोई मिल जाता है जो आपको पका देता है, है ना। फिर मन नहीं करता कि यार अब कैसे क्या ही करें, अब तो मन करता है बस जाकर के सो जाएं या फिर इस इंसान से किसी तरह से पीछा छूट जाए तो कितना अच्छा हो। हाँ, तो होते हैं कुछ लोग ऐसे जिंदगी में जो इरिटेटिंग भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है। तो आपके वीकेंड्स किसके साथ कट रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन लोगों के साथ या फिर वो सुपरमार्केट वालों के साथ? बताइए मुझे। फिलहाल एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक भी के प्लस टू रेडियो प्रस्वानी 1701 एम। आप हैं सताक्षी के साथ।

साक्षी के साथ सैटरडे का ये खूबसूरत और बेहतरीन साथ आप एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड के कई बेहतरीन गाने जो कि सुकून को और भी तरोताजा कर रहे हैं। वैसे सुकून पाने के कई तरीके हैं, मतलब ये तो है ही है कि यार बढ़िया है, वीकेंड है और घर पर सो लें। अच्छा, सोने का भी एक अलग जज्बा है ना, मतलब कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो दिन रात सो सकते हैं, मैं सो सकती हूँ। मुझे लगता है कि जितना सो लो उतना बॉडी रिलैक्स हो जाती है और जितना आपको आराम चाहिए वो सोने से ही मिलता है। मतलब जागते हुए अगर आप लेटे भी रहे ना बेड पे तो आपको वो आराम नहीं मिलेगा, मैंने देखा है, जो जब आप सोते हैं तो बॉडी रिलैक्स करती है। तो ये बहुत ही बढ़िया होता है सोना, और मुझे आप कितना भी कह दीजिए मैं उठने की बिल्कुल बात नहीं करूंगी, अगर मुझे पता है कि मुझे कहीं नहीं जाना तो मैं बिल्कुल फुल टू सो सकती हूँ। हाँ, तो सोना जरूरी है। और अपने लिसनर्स से भी जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कितने लोग हैं जो कहते हैं कि यार सो लें, वीकेंड आए हैं तो मतलब सोएंगे, अब सैटरडे संडे हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसे वाले कितने लोग हैं, रेज योर हैंड्स। अच्छा चलिए, हाथ मत उठाइए भाई, हमें मैसेज कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर और बताइए कि कौन कौन है ऐसा जो कहता है कि सैटरडे संडे नो डिस्टर्बेंस क्योंकि मुझे सोना है। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिजवानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

दोस्तों पूरे हफ्ते ना हम एक चकाचौंध भरी जिंदगी जीते हैं, हम दूसरों के हिसाब से जीते हैं। कई ऑफिसेज में ड्रेस कोड होता है तो आप ना चाहते हुए भी उसी ड्रेस कोड में आप ऑफिस जाते हैं, आप काम पे जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से करते हैं। आप खुल के हंसना चाहते हैं लेकिन आप नहीं हंस पाते ऑफिस में। आप बात करना चाहते हैं अपनों से लेकिन फोन अलाउड नहीं होता, आप बात नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें आप दूसरों के हिसाब से करते हैं लेकिन फिर वीकेंड आने पर ऐसा लगता है, इनफैक्ट वीकेंड का इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि लगता है कि चकाचौंध भरी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। बस बारिश, बादल और एक छोटा सा घर, कभी समंदर हो तो कभी पहाड़ हो, नए रास्ते, नए लम्हे, एक सफर जो हमारे ख्वाबों से जुड़ा हो, जिसकी ना कोई टाइमलाइन हो ना कोई मंजिल हो, जिसे टाइम पर कंप्लीट करना, जिसमें से बाहर निकलना कोई बाउंडेशन ना हो, कुदरत के संग बह जाएं और इन हवाओं के हो जाएं। और ऐसा हम वर्किंग डेज पे कहाँ कर सकते हैं, ऐसा तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने वीकेंड्स पे कर सकते हैं। तो चलिए उन्हीं वीकेंड्स के नाम एंजॉय करते हैं। एक और ट्रैक सुनते रहिए सताक्षी के साथ, रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM पर सैटरडे डिलाइट।

फ्रेंड्स, ये था आज एक और सैटरडे का सफर, सैटरडे डिलाइट, जिसे आपने और हमने एंजॉय किया आज हमारे रेडियो प्रस्वानी पर फिर से। जी हाँ, अपने वीकेंड्स को और भी खास बनाने के लिए हम और आप एक बार फिर से इकट्ठे साथ थे, क्योंकि ये वीकेंड्स हम दोनों के लिए बहुत ही खास होते हैं। ये वीकेंड्स ही हैं जो हम एक बार फिर से रिचार्ज कर देते हैं, हम एक बार फिर से हमसे मिला देते हैं। तो चलिए, अब आज के इस सफर को, आपके वीकेंड्स को नहीं भाई, हमारे सफर को, हमारे सैटरडे डिलाइट के सफर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और इस वादे के साथ कि अगले सैटरडे को आपके साथ फिर से होगी मुलाकात, राइट। तो चलिए, आज एक लास्ट ट्रैक के साथ आपको यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ। इसे सुनिए, इंजॉय कीजिए और डूबे रहिए इसमें। अपने वीकेंड्स को बहुत ही खास बनाइएगा और पूरी एनर्जी के साथ वापस काम पर लौटिएगा अगले मंडे को। हैव अ ग्रेट वीकेंड। शब्बक है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को. फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Karein.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या

0: and friendly civil marriage celebrant since 2003.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com, the one stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कंपटीशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270335 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 Balaclava Street Olongaba में। फॉर वेडिंग एंगेजमेंट रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270335। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270335 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपरवर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। इस सरल है, निशुल्क है और विलक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Premium.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: suku, suku.
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

0: पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: After number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Bhattari. Madam, I am your only Adam.
1: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Now is the time for all to see that. Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। Call now on 04111270355. Remember, the number is 04111270355. Ya phir email kare permanand@optusnet.com.au per. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember.

और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: है मेरी हमरा, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 339 1 0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा। साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल प्रिंस ज्वेलर्स @bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: नवीं क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ. ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ.

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

practicemaths.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेंबर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

ना बदला में ना

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

0: Pourquoi?
1: Bonne année!

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ फोर्टिस मेडांटा सी के बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्सऑर्ग स्पेल्ड OMSORG वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360 ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

जय माता दी। माँ के सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM और मैं हूँ आपके साथ सताक्षी, भक्ति के आनंदमय सफर भक्ति सागर में। कहते हैं जब मन थक जाता है, जब रास्ते मुश्किल लगने लगते हैं, जब इंसान अपनी परेशानियाँ किसी से कह नहीं पाता, तब उसे एक ऐसे सहारे की तलाश होती है जहाँ बिना कुछ कहे भी मन को सुकून मिल जाए। और भक्त के लिए वो सहारा है माँ दुर्गा। माँ जिनके नाम में शक्ति है, जिनकी छाया में ममता है और जिनके दरबार में आकर बड़े से बड़ा दुख भी थोड़ा लगने लगता है, उन्हीं माँ को समर्पित है हमारा आज का ये कार्यक्रम भक्ति सागर। नवरात्रि के पावन पर्व पर आइए करते हैं माँ की स्तुति।

आप सुन रहे हैं भक्ति सागर रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज माँ दुर्गा को समर्पित है हमारा ये सफर, और इस भक्ति के सफर में आपके साथ है सताक्षी। माँ जगत जननी जो कभी शैल पुत्री बनकर हमें दृढ़ता सिखाती हैं, तो कभी ब्रह्मचारिणी बनकर तप और धैर्य का संदेश देती हैं, कभी चंद्रघंटा बनकर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देती हैं, तो कभी नव दुर्गा रूप में हमें हमारी ही शक्ति का एहसास कराती हैं। आइए अपने मन को शांत करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं और इस भक्तिमय यात्रा में आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए माँ के चरणों में भक्ति का ये अगला पुष्प अर्पित करते हैं।

रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM पर आप सुन रहे हैं भक्ति सागर। आपके साथ भक्ति के सफर में सताक्षी है और आज हम अपने इस सफर में बिखेर रहे हैं माँ के रंग। नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्ति का ये सफर नवरात्रि विशेष बन गया है।

जय माता दी भक्तजनों, नवरात्रि यानी नौ रातें माँ की आराधना की, आत्मचिंतन की और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। लेकिन क्या नवरात्रि का अर्थ केवल व्रत करना, पूजा करना और मंदिर जाना है? बिल्कुल भी नहीं। नवरात्रि हमें अपने भीतर झांकने का अवसर भी देती है। हमारे भीतर भी क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, कभी कभी निराशा भी है, और हमारे भीतर ही प्रेम है, करुणा है, साहस है और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना भी है।

भक्ति सागर, इसी सफर में आप सताक्षी के साथ हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम माँ के सभी भक्ताज एक साथ हो गए हैं माँ की स्तुति के लिए। आइए उनको एक और पुष्प चढ़ाते हैं इस भक्ति गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

आदतों को छोड़ने का प्रयास करें जो हमें और दूसरों को दुख पहुंचाती हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी कमजोर का साथ देते हैं, तब भी हमारी भक्ति अपने सुंदर रूप में प्रकट होती है। माँ के मंदिर में दीप जलाना पूजा है और किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना भी तो पूजा है। इसी भावना के साथ आइए माँ के चरणों का स्मरण करते हैं।

वाणी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं भक्ति सागर। भक्ति का ये अनमोल सफर आज और भी खास है क्योंकि आज माता रानी को हम याद कर रहे हैं नवरात्रि के पावन पर्व पर। आइए भक्ति सागर में आपको आगे लेकर चलते हैं इस अगले गीत के साथ।

पुनः स्वागत है आपका भक्ति के सफर आराधना में। भक्तजनों, आपके साथ हूँ मैं सताक्षी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज स्तुति होती है माँ शैलपुत्री की। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री हमें दृढ़ता और विश्वास का संदेश देती हैं। पर्वत की ओर देखिए, आंधियां आती हैं, वर्षा होती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन पर्वत अपनी जगह अड़िग खड़ा रहता है। इसी तरह जीवन में भी परेशानियां आएंगी। कभी हमारे प्रयास सफल होंगे तो कभी हमें असफलता मिलेगी। कभी लोग हमारा साथ देंगे तो कभी हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे में जरूरी है कि हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करिए कि वो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें।

नवरात्रि में बहुत से भक्त व्रत रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं। व्रत का धार्मिक महत्व अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ आत्म संयम का भाव भी जुड़ा हुआ है। हम अपने विचारों, शब्दों और व्यवहार पर भी ध्यान दे सकते हैं। क्या हम किसी से कठोरता से बात करने से बच सकते हैं? क्या हम चुगली करने से बच सकते हैं? क्या हम किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं? क्या हम कुछ समय अपने मन को शांत रखने और प्रार्थना करने में लगा सकते हैं? ये छोटे छोटे प्रयास हमारी दिनचर्या को और सार्थक बना सकते हैं। और एक जरूरी बात, व्रत करते समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार ही उपवास करें और आवश्यकता होने पर चिकित्सीय सलाह जरूर लेते रहें। माँ को हमारी श्रद्धा प्रिय है, इसलिए अपनी देखभाल भी तो जरूरी है।

भक्तजनों, ये थी आज की भक्ति सागर की प्रस्तुति रेडियो प्रेसवाणी 107.1 AM पर। माँ की आराधना 9 दिन हम और आप मिलकर करते रहेंगे, बस हर रोज हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। तो कल सुबह भक्ति के एक और सफर में आपके साथ होगी सताक्षी की मुलाकात। माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके जीवन में सदा प्रकाश विद्यमान रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता।

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: यह है रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हमारे स्टूडियो में रविवार के सुबह 7 बज चुके हैं। मैं आपके साथ देता हूं हर रविवार को सुबह 6 से 7 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत, और फिर 7 से लेकर 8 बजे तक हमारा खास इस्लामिक प्रोग्राम जिसमें आप सुन सकते हैं 7 से कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वालियां, और फिर उसके बाद आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ चुने हुए हम नात और कव्वाली के साथ, उसके बाद मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हमारा रेगुलर इस्लामिक प्रोग्राम।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusdevotional.
1: अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वाली, जिसको हम पेश करते हैं हर रविवार की सुबह 7 बजे से। उससे पहले आप सुनते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत। रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिस्बेन। और हर सप्ते की तरह एक बार फिर आपकी खिदमत में आज सुबह के इस्लामिक प्रोग्राम।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: जिनको हम बेचते हैं उनको ये तो कहता है कि फौजी प्रोटेस्ट पे हम बाइकॉट करें, जैसे हम दूसरों सारे चीजों पर बाइकॉट करते हैं, इन पर कर सकते हैं ना, रेमिटेंस नहीं भेजेंगे, ये क्या कितने देर तक मुल्क को चला सकेंगे?
1: क्या ना भेजे दोबारा, आवाज पूरी नहीं आई, क्या ना
0: पैसे वगैरह इधर से नहीं भेजेंगे?
1: ठीक,
0: सबको ये मुतहद हो जाए, अगर एक साल या छह महीने ना भेजेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको फर्क पड़ेगा।
1: लेकिन अराइन साहब सॉरी आपको दरमियान में, ये बात किसी एक और आदमी ने भी कही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, आप जरा मुझे समझाओ कि जब आप पैसे अपने रिश्तेदारों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम अक्सर जो भेजते हैं तो वो रिश्तेदारों को ही भेजते हैं ना, या ज़कात भेजते हैं तो गरीबों को भेजते हैं, तो अगर आपने भेजा नहीं तो आपके रिश्तेदारों को तकलीफ होगी या वो जो गरीब गुरबा है उनको तकलीफ होगी जो अपने ऑफिसों के अंदर और हेडक्वार्टर्स के अंदर या एचक्यू के अंदर बैठे हैं, उनको तो तकलीफ नहीं होगी, होगी? जरा एक्सप्लेन करो ना, मुझे समझ आ जाए।
0: अगर क्योंकि अगर मैं जिसको पैसे भेजता हूँ मैं उसको कहता हूँ अगर तुम उधर रह के इनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, इनकी प्रोटेक्ट भी हर चीज इनकी यूज कर रहे हो, तो बेहतर यह मैं उनको ना भेजूँ, वो भूखा मर रहा है तो फिर उनसे जाके मांगे ना, हम पे कोई फर्क तो नहीं, हम उनको पैसे भी भेजे वो उल्टा वो उनकी चीजें भी खरीदे और उनको प्रॉफिट भी होती रहे, बाइकॉट भी नहीं कर रहे, ठीक है, हम चलो जो पैसे भेजते हैं उनको ये तो कहें भी हमारी भी बात मानो, हम आपको ये सहूलत देते हैं तो आपकी ये सहूलत नहीं, अगर एक उनकी चीज बनी हुई नहीं लेंगे दूसरी कंपनी की ले ले, उसको फायदा तो होगा ना, इनको तो नुकसान होगा ना, लेकिन हम सब कुछ करते ही नहीं तो फिर हम एक दूसरे पे छोड़ रहे हैं, यार क्या करें, यार छोड़ो कुछ नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो खुद कुछ करना चाहे, वो अल्लाह ताला ने तो नहीं नीचे कहते, अल्लाह ने तो नहीं इनके आन पकड़ने, हम अशरफुल मखलूकात हम कहते हैं ना, इंसान को सवाल तो दिया, अगर इंसान और हैवान में फर्क नहीं है तो वो भी खाना खा के सोता है, सब कुछ करता है, तो हम भी खाना खा के सो रहे हैं तो फिर इंसान और हैवान में क्या फर्क है? देखा, ये हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, अपना हिस्सा तो डालना चाहिए ना।
1: चलो जी, आपने अपनी बात कह दी, जज़ाकअल्लाह खैर, आपके ख्याल,
0: मैंने तो अपने दिल की बात की, अगर आपको या सुनने वाले को खुशी है ना अच्छी लगी हो उसका अपना फेल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो हक अदा किया,
1: जी जी,
0: तो मैं अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो मैं पेश की मात्र चाहता हूँ, कर सकता हूँ।
1: नहीं नहीं, आपने बात तो सही कही कि हमें अपने मुल्क के लिए यानी अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और वहाँ के जो सख्त हालात हैं उसको उन हालात से किस तरह निकलें उसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, और जो लोग इन हालात के अंदर इन लोगों को डालते हैं उनको किसी तरीके से सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक, लेकिन सिर्फ मेरी वो एक अर्ज थी, और सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी जितने भी हैं, कि अक्सर तौर पर हम कहते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो यानी क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आई। तो अगर जितने भी हमारे सामीन हैं, अगर आपके जहन के अंदर भी कोई बात आई कि यहाँ क्या कर सकते हैं ताकि हम जो अवाम है उनकी मदद कर सकें या मुल्क को बेहतर बना सकें या जो हालात को खराब कर रहे हैं उनको समझा सकें या उनके ऊपर सख्ती आ सके, ये क्या कर सकते हैं, अगर कोई जहन के अंदर बात आई तो ये मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। थैंक यू अली अराइन साहब, गुड टू हियर फ्रॉम यू, बड़ी खुशी, और ये मोस्ट वेलकम, जब भी मर्जी हो आप आ सकते हैं, हर जुमा की शाम को हम इधर होते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। ये थे अली अराइन साहब, इन्होंने नाम बतलाया, अल्लाह इनको जजाए खैर दे, अच्छी बातें कही और ये अपने ख्यालात का इजहार किया। यू आर मोस्ट वेलकम एज वेल, के आप आ सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, और अगर कोई अच्छी राय हो, अच्छी बात हो आपके दिल के अंदर या लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम। ऐसे करते हैं, ब्रेक जरा ओवर ड्यू हो गई है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, विल गो टुवर्ड्स ब्रेक इंशाल्लाह।
2: आलम ऑन एयर इज ब्रॉडकास्ट ऑन सनराइज रेडियो ब्रैडफोर्ड every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. that's London time, and recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning, and replayed on Radio 17.

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

0: हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। हमारे इस वेदवाणी कार्यक्रम को सुनने वाले श्रोतागणों की ओर से ये अनुरोध आया हुआ है कि हम पूजा और प्रार्थना के विषय में कुछ चर्चा करें। इस विषय के संबंधित कई प्रश्न उठते हैं। हम पूजा क्यों करते हैं? विग्रह या मूर्ति के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? फूल, धूप, दीप, फल और भोजन क्यों अर्पित करते हैं? विशेषकर कठिनाई के समय हम कृष्ण से प्रार्थना क्यों करते हैं? क्या पूजा केवल धार्मिक परंपरा है? क्या प्रार्थना केवल भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का साधन है, या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है? ये पूजा या प्रार्थना का अभ्यास केवल रीति रिवाज नहीं है, ये कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः जागृत करने के अवसर है। हम इस संसार के स्वतंत्र भोक्ता नहीं है, एंजॉयर नहीं है। हम कृष्ण के शाश्वत अंश है और उनके साथ अपने प्रेममय संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए है। एक ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए जो अपने पिता से बिछुड़ गया हो। उसके पास खिलौने, धन और अनेक सुविधाएं हो सकती है, फिर भी वो पिता के स्नेह के लिए तरसता है। इसी प्रकार जीवक के पास भौतिक सुविधाएं हो सकती है, परंतु हृदय की सबसे गहरी आध्यात्मिक आवश्यकता परम भगवान के साथ संबंध से ही पूरी होती है। पूजा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करती है और प्रार्थना उनके आश्रय के लिए हमारे हृदय की पुकार को स्वर देती है। हम कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि वे हमारे प्रेम और सेवा के योग्य है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम उनके प्रति अपनी निर्भरता स्वीकार करते हैं। तो चलिए अब हम पूजा और प्रार्थना को आगे समझते हैं। पूजा क्या है? पूजा परम भगवान की आराधना और सम्मान करने का कार्य है। वैष्णव परंपरा में पूजा केवल बाहरी समारोह नहीं है, बल्कि कृष्ण को अर्पित की गई भक्ति सेवा है। अधिकृत पूजा विधि के अनुसार हम फूल, धूप, दीप, जल, भोजन या अन्य उपयुक्त वस्तुएं अर्पण कर सकते हैं। इनका मूल तत्व है भक्ति। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उस भक्ति पूर्वक अर्पित भेंट को स्वीकार करता हूं। यहां भक्त्या या भक्ति के साथ शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है। कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि वे किसी भेंट को केवल इसलिए स्वीकार करते हैं कि वो महंगी है, भव्य है या विस्तृत अर्थात एलेबरेट है। वे भक्ति के साथ अर्पित भेंट की बात करते हैं। कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम है। उन्हें हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संपूर्ण सृष्टि पहले से ही उनकी है। तो चलिए हम एक सरल भेंट के उदाहरण को देखते हैं। दो भक्तों की कल्पना कीजिए। पहला भक्त बहुत ही भव्य भोग तैयार करता है, परंतु उसका ध्यान कहीं और है। वो गर्वित है और दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। और दूसरी ओर देखें तो दूसरे भक्त के पास केवल थोड़ा सा फल और जल है, जिसे वो सावधानी, ईमानदारी और कृतज्ञता से अर्पित करता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि विस्तृत पूजा गलत है। सुंदर और भव्य पूजा भक्ति की अद्भुत अभिव्यक्ति हो सकती है, परंतु बाहरी वैभव सेवा के आंतरिक भाव का स्थान नहीं ले सकता। अपनी क्षमता और पूजा के प्रामाणिक विधि के अनुसार जो अर्पित कर सकते हैं करें, परंतु निष्कपट हृदय से करे और भगवान को जो अनुकूल हो वो अर्पण करे। तो चलिए अब देखते हैं प्रार्थना क्या है। प्रार्थना का अर्थ है विनती, निवेदन या हृदय से की गई हुई पुकार। प्रार्थना के अंतर्गत कृष्ण की महिमा गाना, प्रणाम करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, क्षमा मांगना, आध्यात्मिक मार्गदर्शन मांगना और उनकी इच्छा के प्रति समर्पण करना, ये सब सम्मिलित है। भगवान के सामने अपनी इच्छाओं की सूची रख देना, केवल इसे प्रार्थना नहीं कहते। प्रार्थनाओं को कहने का तरीका इस प्रकार है, हे कृष्ण, आप मेरे प्रभु है, कृपया मुझे आपका स्मरण करने में सहायता दे, कृपया मेरी गलतियों को क्षमा करे, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाए, कृपया मुझे आपको भूलने से बचाए और कृपया आप मुझे भौतिक आसक्ति अर्थात मटेरियल अटैचमेंट से बचाए। एक भक्त सुरक्षा और कठिनाइयों से राहत के लिए प्रार्थना कर सकता है, परंतु जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक समझ गहरी होती है, वो अस्थाई लाभों के बजाय स्वयं कृष्ण को पाने की इच्छा करने लगता है। पूजा सेवा की भेंट है, प्रार्थना उस हृदय की पुकार है जो सेवा करना चाहता है। एक और प्रश्न जो लोग कभी काल पूछते हैं वो यह है कि यदि भगवान सर्वव्यापी है, सब स्थानों में है, तो उसे अपने मंदिर या घरों में मूर्ति के रूप में क्यों पूजा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर का आरंभ भगवान श्री कृष्ण अपने ही वचनों से करते हैं। भगवद गीता 9वां अध्याय 11वां श्लोक, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य जैसा रूप धारण करते देखकर मेरा अनादर करते हैं। वे नहीं जानते कि मैं समस्त जीवों का परमेश्वर हूं। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनकी पहचान भौतिक शरीर तक सीमित हो। भगवद गीता के अनुसार उनका स्वरूप दिव्य है। वास्तव में विग्रह आराधना या मूर्ति पूजन भगवान की कृपा का सिद्धांत है। एक प्रामाणिक रूप और पूजा की विधि के माध्यम से भगवान अपने आप को हमारी सेवा के लिए उपलब्ध बनाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भौतिक पदार्थों से भगवान को बना सकते हैं या उन्हें अपनी इच्छा से कहीं भी प्रकट होने के लिए बाध्य कर सकते हैं। भगवान के द्वारा ही दिया हुआ प्रामाणिक मार्ग से और वैष्णव आचार्यों के मार्गदर्शन से हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। विग्रह अर्थात मूर्ति आराधना हमारी इंद्रियों को भक्ति सेवा में लगाने का व्यवहारिक साधन है। हम विग्रह के दर्शन करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, वेदी सजाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान के नाम सुनते हैं। हमारी इंद्रियां जो सामान्यतः सांसारिक विषयों में लगी रहती है, इस माध्यम से वे कृष्ण की सेवा में लगने लगती है। श्रीमद् भागवतम यानी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद 5वें अध्याय 23वें श्लोक में प्रहलाद भक्ति सेवा के 9 प्रमुख विधियों का वर्णन करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। अर्थात भगवान विष्णु के विषय में सुनना, उनकी महिमा का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, प्रार्थना और प्रणाम करना, उनका सेवक बनना, उनसे मित्रता करना और अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित करना, इनमें से 2 विधियां यहां विशेष रूप से संबंधित है। एक है अर्चनम अर्थात भगवान की विधि पूर्वक पूजा और दूसरा है वंदनम, भगवान को प्रार्थना और प्रणाम अर्पित करना। दोनों भक्ति के ही रूप है। वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटर्स नहीं है और इन दोनों में से किसी को भी यांत्रिक क्रिया अर्थात मैकेनिकल एक्टिविटी तक सीमित नहीं करना चाहिए। कोई भक्त सुंदर ढंग से आरती कर सकता है परंतु बाद में परिवार के सदस्यों से कठोर व्यवहार कर सकता है। कोई प्रतिदिन प्रार्थना कर सकता है परंतु कुटिलता की आदत सुधारने के लिए तैयार ना हो। वास्तव में भक्ति अभ्यास हमारी चेतना और आचरण को बदलने के लिए है। बाहरी क्रियाओं को चाहिए कि वो कृष्ण के प्रति आंतरिक निष्ठा को सहायता प्रदान करे। पूजा के व्यवहारिक रूपों में से सबसे सरल है भोज पदार्थ अर्पण करना। भगवद गीता के 9:26 में कृष्ण कहते हैं कि वे एक पत्र पुष्प फल और जल स्वीकारते हैं यदि उसे भक्ति भाव से अर्पण किया जाए। और फिर भगवद गीता 9:27 में वे इसी सिद्धांत को हमारे सभी कार्यों तक विस्तृत करते हैं। यत करोषि यदश्नासी यज जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ में अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो वो सब मुझे अर्पित करो। तो पूजा केवल मंदिर की वेदी तक सीमित नहीं है। हम कृष्ण के लिए भोजन तैयार करते हैं, भक्तिपूर्ण विधि से अर्पित करते हैं और प्रसाद को सम्मान पूर्वक ग्रहण करते हैं। हम अपना काम, प्रतिभा, समय और उत्तरदायित्व ये सब भी कृष्ण की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। माता पिता परिवार को भोजन परोसने से पहले उसे कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। विद्यार्थी सत्यनिष्ठा से पढ़ाई करके उसके फल भगवान को समर्पित कर सकता है। एक कर्मचारी स्वार्थपूर्ण लाभ को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाए बिना अपने उत्तरदायित्वों को निष्ठा से निभा सकता है। वेदी यानी जो हमारे घर पर भगवान का स्थान होता है वो हमारे दिन का केंद्र बन जाता है और हमारे दैनिक कार्य उसी केंद्र से जुड़ जाते हैं। तो अब हम पूजा से प्रार्थना की ओर चले। वास्तविक प्रार्थना किस बात से बनती है? क्या ये प्रार्थना की लंबाई, संस्कृत की सुंदरता, आवाज की ऊंचाई या उसे दोहराने की संख्या पर निर्भर करती है? इन बातों का अपना स्थान हो सकता है परंतु मूल प्रश्न है हम कृष्ण से क्या मांग रहे हैं और हमारे हृदय का भाव क्या है। हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रार्थना समर्पण से आरंभ होती है। भगवद गीता 18:66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पाप में प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। कृष्ण का निर्देश समर्पण का निमंत्रण है। वास्तविक समर्पण का अर्थ कृष्ण को अपना रक्षक स्वीकार करना और उनके निर्देशों का पालन करना है। समर्पित भक्त ये आवश्यक नहीं समझता कि जीवन में सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी। वो कृष्ण में विश्वास और भक्ति सेवा की निष्ठा के साथ कठिनाइयों का सामना करना सीखता है। एक बच्चा किसी अनजान जगह पर डर कर अपने माता पिता का हाथ पकड़ता है। परिस्थिति तुरंत न भी बदले फिर भी संबंध के कारण उसे सुरक्षा का अनुभव होता है। इसी प्रकार प्रार्थना कृष्ण को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं है, ये प्रार्थना उन पर विश्वास व्यक्त करना है। महान वैष्णव आचार्य सिखाते हैं कि सर्वोच्च प्रार्थना केवल धन, सफलता, अच्छा स्वास्थ्य या मुक्ति के लिए नहीं है। सर्वोच्च प्रार्थना निष्काम भक्ति सेवा के लिए है। इसका सुंदर उदाहरण महारानी कुंती की प्रार्थना है। भागवत महापुराण 1:8:25 में कुंती इस प्रकार प्रार्थना करती है। विपदाः संतु हुताः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। अर्थात महारानी कुंती असाधारण इच्छा व्यक्त करती है कि यदि कठिनाइयों से भगवान का सानिध्य बना रहे और उन्हें भगवान को भूलने से बचाए तो कठिनाइयां बार बार आती रहे। इस प्रार्थना को हमें सावधानी से समझना है। कुंती यहां हमें ये शिक्षा नहीं दे रही है कि हम कठिनाइयां प्राप्त करने के लिए कठिनाइयां ढूंढे, और न ही हमें ये सिखा रही है कि हम अपने स्वास्थ्य या उत्तरदायित्व की परवाह न करें। कुंती यहां एक अनोखी आध्यात्मिक प्राथमिकता को दर्शा रही है कि कठिनाइयों में भी कृष्ण का स्मरण उन भौतिक सुख सुविधा से बहुमूल्य है जिन सुख सुविधाओं के कारण हम उन्हें भूल सकते हैं। संकट के समय कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर हो सकता है। प्रार्थना, जप, शास्त्र पाठ और भक्तों का संग करता है। संकट समाप्त होने पर वो फिर भगवान को भूल सकता है। कुंती की प्रार्थना पूछती है कि क्या मैं कृष्ण को केवल परेशानी के समय ही नहीं बल्कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी याद रख सकती हूं। यही हमारे दैनिक प्रार्थना के लिए गहरी शिक्षा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में एक और आवश्यक प्रार्थना मिलती है, और ये प्रार्थना भौतिक इच्छाओं से मुक्ति के लिए होती है। अपने शिक्षाष्टक 4 में उन्होंने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतुकी त्वयि। अर्थात हे जगदीश्वर, मुझे धन, अनुयायी या सांसारिक भोग नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर तक आपके प्रति मेरी निष्काम भक्ति बनी रहे। कृष्ण भावनामृत के साधक के लिए ये एक आदर्श प्रार्थना है। हम परिवार के कल्याण, उत्तरदायित्व निभाने की शक्ति और वास्तविक कष्ट से राहत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु हमें ऐसे हृदय के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो परिस्थितियां कैसी भी हो कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण बना रहे। उदाहरण के रूप में, कृष्णा कृपया मुझे आप पद की उन्नति दे, ऐसी प्रार्थना करने के बजाय हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे कृष्ण, कृपया हमारे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमें मदद करे, हमें सदा आपका स्मरण रहे, और आप जो भी कुछ अवसर अपनी सेवा के लिए मुझे दे उस अवसर का मैं सही उपयोग करूं। परंतु इससे भी गहरा अनुरोध कृष्ण का बेहतर सेवक बनने में है। तो हमारे वैदिक शास्त्र न ही केवल हमारे पूजा और प्रार्थना का अर्थ समझाते हैं, परंतु वे भक्तों का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनका आचरण हमें यह सिखलाता है कि हम कैसे भगवान के निकट जा सकते हैं। तो चलिए हम सर्वप्रथम सुदामा विप्र का उदाहरण देखें, जिन्होंने भगवान को एक बहुत ही तुच्छ भेंट दी थी। इनके चरित्र से हम ये सीख सकते हैं कि एक तुच्छ भेंट भी किस भावना से दी जाती है। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण और कृष्ण के बचपन के मित्र थे। द्वारका में कृष्ण से मिलने जाते समय उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान से सहायता मांगने के लिए प्रोत्साहित किया। सुदामा एक छोटी सी पोटली में चिवड़ा लेकर गए। कृष्ण ने अत्यंत स्नेह से उनका स्वागत किया, उन्हें प्रिय मित्र की तरह अपनाया और उनकी भेंट स्वीकार की। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 स्कंद अध्याय 80-81 में वर्णित है। कृष्ण किसी भेंट को उनकी कीमत से नहीं आंकते। सुदामा की भेंट में स्नेह और विनम्रता थी। इसका अर्थ यह नहीं कि विग्रह पूजा या मूर्ति पूजा के मानकों की उपेक्षा करे या लापरवाही से वस्तुएं अर्पण करे। हमारी भेंटों में गर्व के बजाय निष्कपटता होनी चाहिए। कृष्ण को कुछ अर्पित करने से पहले पूछे, क्या मैं ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर रहा हूं या केवल एक नियमित क्रिया पूरी कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण है गजेंद्र का, और ये उदाहरण है असहाय अवस्था में प्रार्थना। गजेंद्र की कथा श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद अध्याय 2-4 में प्रार्थना का शक्तिशाली उदाहरण है। हाथियों के राजा गजेंद्र को स्नान करते समय मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अत्यधिक शारीरिक बल के बावजूद वे स्वयं को छुड़ा नहीं सके और अंततः उनकी शक्ति समाप्त हो गई। तब उन्हें परम भगवान का स्मरण हुआ और उन्होंने समर्पण भाव से प्रार्थनाएं की। श्रीमद् भागवतम 8:3-2 में ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि, अर्थात गजेंद्र समस्त अस्तित्व के मूल स्रोत भगवान के परम पुरुषोत्तम स्वरूप को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। भगवान ने गजेंद्र की प्रार्थना का उत्तर दिया और उन्हें बचाया। इससे तीन शिक्षाएं मिलती है। पहली, कृष्ण के साथ संबंध विकसित करने के पहली कृष्ण के साथ संबंध विकसित करने के लिए संकट आने तक प्रतीक्षा न करें। गजेंद्र को पहले से सीखी हुई प्रार्थनाएं याद करें। दूसरी, प्रार्थना परम भगवान पर अपनी निर्भरता स्वीकार करना है, केवल भौतिक लाभ पाने का प्रयास नहीं। तीसरी, बल धन शिक्षा या प्रभाव पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देते, वे कृष्ण के साथ संबंध का स्थान नहीं ले सकते। और इस प्रार्थना का व्यवहारिक प्रयोग कठिन निर्णय के सामने हो तो प्रार्थना से शुरुआत करें। गुरु साधु और शास्त्र का परामर्श ले, फिर उत्तरदायित्व से कार्य करें। प्रार्थना और व्यवहारिक प्रयास एक दूसरे के सहायक होने चाहिए। अब तीसरा उदाहरण है भक्त प्रहलाद का, और यह है द्वेष रहित प्रार्थना। अपने पिता हिरण्यकशिपु के कठोर विरोध के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहे। जब भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया, तब प्रहलाद ने द्वेष या प्रतिशोध से प्रतिक्रिया नहीं की। वे विनम्रता पूर्वक भगवान के पास गए और प्रार्थनाएं अर्पण की। उनका उदाहरण दिखलाता है कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान से कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान से शत्रुओं को हराने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ ऐसा हृदय विकसित करना है जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। प्रहलाद की शिक्षाएं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है। 7:5-23 में वे भक्ति की 9 विधियां बताते हैं और अध्याय 9 में भगवान नृसिंहदेव की स्तुति करते हैं। अब हमारे सामने तो प्रहलाद जैसी असाधारण परिस्थितियां तो नहीं है, फिर भी प्रतिदिन आलोचना, पारिवारिक मतभेद, कार्यस्थल के विवाद और निराशाएं आती है। इसी कारण एक उपयोगी प्रार्थना ये है कि हे कृष्ण, कृपया मुझे आपकी शिक्षाओं के अनुसार आचरण करने में सहायता दे। मुझे ऐसा बल दे कि मैं कठोर बने बिना सत्य बोल सकूं, अहंकारी बने बिना दृढ़ रह सकूं और अपनी उत्तरदायित्व छोड़े बिना क्षमा कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना हमारे संबंधों को बदल सकती है। अब चौथा उदाहरण है गोपियों का, जिन्होंने प्रेम से प्रेरित आराधना दर्शाई। वृंदावन वासी विशेषकर गोपियां श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति की उच्च अवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उनकी भक्ति भौतिक पुरस्कार या प्रतिष्ठा की इच्छा से प्रेरित नहीं है, उनके हृदय कृष्ण को प्रसन्न करने में लीन है। इन उच्च लीलाओं को सम्मान पूर्वक समझना चाहिए और उन्नत भक्तों के अंतरंग भावों की नकल नहीं करनी चाहिए। वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति उचित मार्गदर्शन में अधिकृत भक्ति विधि का अनुसरण करने से होती है। हम जहां हैं वहीं से आरंभ करें, कृष्ण के विषय में सुने, उनके नामों का कीर्तन करें, विग्रह मूर्ति की पूजा करें, प्रसाद ग्रहण करें, भक्तों की सेवा करें और भक्तिमय जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करें। निष्कपट साधना और कृष्ण की कृपा से प्रेम विकसित होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में पूजा और प्रार्थना का प्रयोग किस प्रकार करें। हम इन शिक्षाओं को अपने घर, कार्यस्थल और निजी दिनचर्या में कैसे ला सकते हैं? उत्तर ये नहीं कि पूजा को अधिक जटिल बना दिया जाए, बल्कि भक्ति साधना को नियमित, एकाग्र और अर्थपूर्ण बनाया जाए। अब पहला प्रयोग है कि दिन की शुरुआत कृष्ण के साथ करें। प्रातःकालीन पूजा भगवान को प्रणाम करें, उपयुक्त तो हो तो वेदी साफ करें। अपनी साधना के अनुसार ताजा जल और फूल अर्पित करें और अपने मार्गदर्शन तथा परिस्थितियों के अनुरूप पूजा करें। जप और कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करें। जप को केवल निश्चित संख्या में माला पूरी करने की दौड़ ना बनाए। उद्देश्य पवित्र नामों को ध्यान से सुनना है, अध्ययन और मनन वो भी करना है, भगवद गीता यथारूप या श्रीमद भागवतम का कोई अंश पढ़े। उस दिन पर लागू की जा सकने वाली एक शिक्षा पर विचार करें। दिनचर्या की अवधि अलग अलग हो, दिनचर्या की अवधि अलग अलग हो सकती है। महत्वपूर्ण बात नियमितता, निष्कपटता और उचित मार्गदर्शन में प्रगति है। तो पूजा और प्रार्थना का दूसरा व्यवहारिक प्रयोग है, भोजन करने से पहले उसे अर्पित करें। भगवद गीता 9वें अध्याय 26वें और 27वें श्लोक में कृष्ण को भोजन अर्पित करने का दार्शनिक आधार देते हैं। अपने घरों में भक्त सामान्यता अर्पण के योग्य शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं। परंपरा के अनुसार अर्पित न की जाने वाली सामग्री से बचते हैं और भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से पहले कृष्ण को अर्पित करते हैं। ऐसा करने से भोजन के प्रति हमारा संबंध बदल जाता है। ये मेरा है और मैं इसे अपने भोग के लिए खाऊंगा, ऐसा सोचने के बजाय हम ये भाव विकसित करते हैं कि यह कृष्ण की कृपा से मिला है, पहले इसे उन्हें अर्पित करूं। भोजन शरीर को पोषण देता है, परंतु उसे ग्रहण करना भक्ति स्मरण और कृतज्ञता से जोड़ दिया जाता है। पूजा और प्रार्थना का तीसरा उपयोग है कि हम काम को अर्पण बना दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर या प्रार्थना कक्ष तक सीमित है, परंतु भगवद गीता 9:27 हमें अपनी गतिविधियां कृष्ण को अर्पित करने के लिए कहती है। एक डॉक्टर सत्यनिष्ठा और करुणा से रोगियों की सेवा कर सकता है, एक शिक्षक उत्तरदायित्व से पढ़ा सकता है, व्यापारिक नैतिक ढंग से व्यापार कर सकता है, माता पिता बच्चों की देखभाल को पवित्र उत्तरदायित्व मान सकते हैं। याद रहे, केवल मन ही मन कृष्ण का स्मरण करते हुए कोई काम कर लेने से वो अपने आप शुद्ध भक्ति नहीं बन जाता। भक्तिपूर्ण कार्य विकसित करने के लिए अपने कर्मों को कृष्ण की प्रसन्नता से जोड़ना, उनकी शिक्षाओं का पालन करना और उचित मार्गदर्शन स्वीकार करना आवश्यक है। हमारे सामान्य कर्तव्य भी कृष्ण को समर्पित जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। अब चौथा प्रामाणिक प्रयोग है कि प्रतिदिन प्रार्थना करने की आदत विकसित करें। कृतज्ञता इस प्रकार प्रकट करें कि हे कृष्ण, इस जीवन आपकी शिक्षाओं और भक्ति सेवा में लगने के अवसर के लिए आपका धन्यवाद। फिर विनम्रता की प्रार्थना, कृपया मुझे अपनी गलतियां पहचानने और अहंकार, ईर्ष्या तथा स्वार्थ पर विजय पाने में सहायता दे। और फिर मार्गदर्शन, कृपया भगवद गीता की शिक्षाओं को समझने और उनका पालन करने में मेरी सहायता करें। और फिर सेवा, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं और केवल अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करने में सहायता दे। ये सब व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के उदाहरण है, शास्त्र से लिए गए उदाहरण नहीं। ये भगवद गीता और वैष्णव परंपरा में सिखाए गए भावों को व्यक्त करते हैं। अब पूजा या प्रार्थना के समय मन भटकने लगे तो क्या करें? ये सामान्य चुनौती है। हम विग्रह या मूर्ति के सामने खड़े होकर काम के बारे में सोच सकते हैं, जब करते समय अगले दिन के कार्यों की योजना बना सकते हैं, या प्रार्थना का अर्थ समझे बिना उसे दोहरा सकते हैं। इन सब का समाधान हार मान लेना नहीं है, बल्कि मन को बारंबार कृष्ण की ओर लौटाने का अभ्यास करना है। भगवद गीता 6:26 में कृष्ण निर्देश देते हैं कि मन जहां जहां और जब जब भटके उसे वापस लाकर वश में करना चाहिए। जब प्रार्थना और पूजा में ध्यान भटके तो उसे पहचाने, नम्रता से ध्यान वापस लाए और अभ्यास जारी रखे। आध्यात्मिक जीवन को केवल ध्यान भटकने की अनुपस्थिति से न आंके, ये भी देखे कि आप बार बार कृष्ण की ओर लौटने के लिए कितने तत्पर है। एक व्यवहारिक अंतर यह है कि हम वस्तुएं मांगे या भक्ति मांगे। दो प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। पहली इस प्रकार, हे कृष्ण कृपया सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार कर दे। और दूसरी प्रार्थना यह है कि कृष्ण कृपया मुझे सही काम करने का मार्ग दिखाए, जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता उन्हें स्वीकार करने में सहायता दे और मुझे आपसे जुड़ा रखे। दूसरी प्रार्थना समर्पण की गहरी तत्परता व्यक्त करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भौतिक समस्याओं में सहायता नहीं मांग सकते, बल्कि ऐसे अनुरोधों को आध्यात्मिक विकास के व्यापक लक्ष्य के भीतर रखा जाता है। दैनिक जीवन में पूजा और प्रार्थना को जोड़ने का ये व्यवहारिक तरीका है। तो प्रिय श्रोतागण, हमने पूजा और प्रार्थना के अर्थ, विग्रह या मूर्ति आराधना के महत्व तथा सुदामा, गजेंद्र, प्रहलाद और महारानी कुंती के उदाहरणों पर चर्चा की। आइए इन शिक्षाओं को एक साथ रखें। पूजा केवल वस्तुएं अर्पित करना नहीं है, ये स्वयं को भक्ति सेवा में अर्पित करना है। प्रार्थना केवल भौतिक लाभ मांगना नहीं है, ये विनम्रता, कृतज्ञता, समर्पण और भगवान की सेवा की इच्छा के साथ कृष्ण के पास जाना सिखाना है। ये शिक्षाएं हमें व्यवहारिक मार्ग देती है। अधिकृत भक्ति विधि के अनुसार कृष्ण की पूजा करें, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करें, शास्त्र सुने, प्रसाद ग्रहण करें, भक्तों का संग करें और अपना जीवन उसकी सेवा में समर्पित करें। और फिर तीन महत्वपूर्ण शास्त्रीय निर्देश, भक्ति से अर्पित करें पत्र, पुष्प, फल और जल, और अपने कर्म समर्पित करें, अपने कार्यों और अर्पणों को कृष्ण से जोड़े। फिर भौतिक लाभ को सर्वोच्च लक्ष्य बनाने के बजाय भगवान के प्रति निष्काम भक्ति की आकांक्षा करें। आज के इस पूजा और प्रार्थना के विषय पर यदि हमारे किसी भी श्रोतागणों को कोई भी प्रश्न या टिप्पणी हो तो आप उसे हमें ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vedvani@gmail.com। आप सभी को हमारा साथ देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब हम आपकी सेवा में कुछ प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हैं।
1: श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम।

तभी एकत्रित कौरवों और पांडवों के समक्ष जब दुशासन ने द्रौपदी के केश और वस्त्र पकड़े तो वह अनन्य भाव से पुकारने लगी, गोविंद दामोदर माधव।

विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति।

दूध दही मक्खन आदि बेचने की इच्छा रखते हुए एक गोपी का मन कृष्ण के चरण कमलों में इतना लीन था कि उसने बिक्री के लिए दूध कहने की जगह भ्रमित होकर कहा, गोविंद दामोदर माधव।

अनाज से भरे उखल में मूसल से प्रहार करते हुए प्रमुग्ध गोपियां एक ही गीत गाती थीं, हे गोविंद दामोदर माधव।

एक कमल नयन कन्या ने अपने हस्त कमल पर बैठे लाल चोंच वाले पालतू तोते को निर्देश दिया। उसने कहा, गोविंद दामोदर माधव।

घर घर में गोपियों की टोली पिंजरे में बंद तोते की तरह टूटे फूटे शब्दों से पुकारती हैं, गोविंद दामोदर माधवा।

पालने में लेटे हुए छोटे बालक के साथ उसे विश्राम कराने के लिए सभी गोपियां निपुणता से संगीत के सुरों और ताल युक्त रचनाएं गाती हैं। गोविंद दामोदर माधव।

बलराम के अनुज चंचलता से खेलते हुए व्याकुल नेत्रों से उसे चकमा दे रहे थे। तभी उस गोपी ने उन्हें लुभाने के लिए ताजे मक्खन की एक गेंद लेकर उन्हें पुकारा, हे गोविंद, दामोदर, माधवा।

हे मेरी जिह्वा, इन मनोहर अलंकारिक आनंदमय अक्षरों की उपस्थिति के प्रभाव से मेरा मुख कमल के समान हो गया है और आप वहां खेलने वाले हंस की तरह हैं। अपने सबसे बड़े आनंद के रूप में हमेशा गोविंद, दामोदर और माधव नामों का उच्चारण करें।

लक्ष्मी देवी के एकमात्र स्वामी एक छोटे से ग्वाल बाल के रूप में माँ यशोदा की गोद में बैठे थे, उनका स्तनपान कर रहे थे। आनंद में लीन उन्होंने उन्हें गोविंद, दामोदर और माधव के रूप में संबोधित किया।

ब्रज धाम में कृष्ण अपने सखाओं और पशुओं की रक्षा करने वाले समकक्ष आयु के बालकों के साथ खेल रहे थे। माता यशोदा ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र को पुकारा, हे गोविंद दामोदर माधव।

माता यशोदा द्वारा गाय की डोरी से उखली में बलपूर्वक बांधे जाने पर माखन चोर ने धीरे से फुसफुसाया, गोविंद दामोदर मा।

अपने ही आंगन में कृष्ण चंचलता पूर्वक कंगन से खेल रहे थे, तो एक गोपी मक्खन की एक गेंद उनके पास लेकर गई और उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपनी हथेली से उनकी आंखें बंद कर दी। हे गोविंद, दामोदर, माधव, और मानो कह रही थी कि बताओ मेरे पास आपके लिए क्या है।

घर घर में विभिन्न अवसरों पर ग्वालों के समूह इकट्ठा होते हैं और साथ में वे सदैव कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हैं, गोविंद, दामोदर और माधव।

ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के बाद और माता यशोदा के पुत्र की बालवत उठखेलियों को याद करते हुए गोपियां माखन मथते हुए उच्च स्वर में गाती हैं, गोविंद दामोदर माधव। जगद्धोत्थ दत्तो नवनीत पिंडो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति।

मंथन करने के बाद घर में माखन का एक ताजा डला रखकर माता यशोदा को अब संदेह हुआ कि अब वह खा लिया गया होगा। उन्होंने कहा, हे मुरारी, गोविंद, दामोदर, माधव, अब मुझे सच बताओ।

घर पूजा समाप्त करने के बाद एक युवा गोपी जैसे कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेमवश माखन मथती है और फिर सभी गोपियों और उनकी सखियों के साथ मिलकर गाती है, गोविंद दामोदर माधव।

एक बार सुबह सुबह जैसे ही एक गोपी माखन से भरे बर्तन में अपनी मथनी एक तरफ रख रही थी, उसने मुकुंद को देखा। फिर उसने गोविंद, दामोदर और माधव के बारे में विभिन्न प्रकार से गीत गाना शुरू किया।

बिना नहाए या खाए भी कृष्ण खेल में लीन थे। स्नेह से अभिभूत माँ यशोदा, जो सदैव केवल अपने पुत्र के कल्याण के बारे में सोचती थी, ने पुकारा, गोविंद, दामोदर, माधव, आओ स्नान करो और कुछ खा लो। सुखम शयानम निलये च विष्णुम देवर्षि मुख्या मुनय।

देवर्षि नारद और अन्य मुनि सदैव शैया पर विश्राम करने वाले भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहते हैं। वे हमेशा गोविंद, दामोदर और माधव के नामों का जप करते हैं और इस प्रकार वे उनके समान आध्यात्मिक रूप प्राप्त करते हैं।

भोर में नींद से उठकर अपने नियत कर्मों को पूरा करने और वैदिक पाठ के बाद सबसे प्रमुख विद्वान ब्राह्मण सदैव उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं, गोविंद दामोदर माधव।

वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का गोविंद से वियोग के कारण व्याकुलता देखकर गोपों और गोपियों के समूहों ने अपनी कमल नैनों में आंसू भरकर गाया, गोविंद दामोदर माधवा।

गायें सुबह सुबह चरने के लिए निकल चुकी थीं। माँ यशोदा ने अपने हाथ की हथेली द्वारा अपने सोए हुए बेटे को धीरे से जगाया और कहा, गोविंद।

लंबे मूंगा के रंग के जटा जैसे बालों के साथ और केवल पत्ते पानी और हवा खाकर शुद्ध ऋषि पेड़ों के नीचे बैठते हैं और गोविंद दामोदर और माधव जप करते हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषाम व्रजस्त्रियः कृष्ण

इन शब्दों को कहने के बाद व्रज की स्त्रियां, जो कृष्ण से इतनी आसक्त थीं, उनसे अपने जल्द ही होने वाले वियोग से अति विचलित अनुभव कर रही थीं। वे सभी सांसारिक लज्जा को भूल गईं और उच्च स्वर में चिल्लाईं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव।

कभी कभी एक गोपी एक रत्नमय पिंजरे के भीतर एक तोते को पढ़ाने में लगी होती, जैसे आनंद कंद आनंद का स्रोत, व्रज चंद्र व्रज का चंद्रमा, कृष्ण गोविंद दामोदर और माधव।

कमल नयन भगवान एक बछड़ी की पूंछ से एक चरवाहे की शिखा बांध रहे थे। जब उनकी मां ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी ठुड्डी उठाई और कहा,

सुबह सुबह उनके प्रिय ग्वाल बालों का एक समूह गायों की देखभाल के लिए हाथ में लाठी डंडे लेकर आया। उन्होंने असीमित आदि पुरुष परम भगवान को संबोधित किया और कहा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव।

जब भगवान मुरारी कालिया नाग को दंड देने के लिए कदंब की शाखा से पानी में कूदे तो सभी गोपियां और ग्वाल बाल वहां पहुंच गए और चिल्लाए, ओह गोविंद, दामोदर, माधव।

अक्रूर से मिलने के बाद भगवान मुकुंद ने कंस के धनुष भंजन समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा में प्रवेश किया। तब सभी नागरिक चिल्लाए, जय गोविंद, जय दामोदर, जय माधव।

जब वसुदेव के दोनों पुत्रों को वास्तव में कंस के दूत द्वारा वृंदावन से बाहर ले जाया गया, तो यशोदा घर के भीतर सिसक कर रोते हुए बोली, गोविंद दामोदर माधवा।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए

0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो मेजबानी पर। मैं जतीश पूरन आपका साथ हूँ, और चलो एक घंटा का प्रोग्राम है। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप इंटरनेट से सुन रहे हैं या रेडियो से सुन रहे हैं, चलो आपका तहे दिल से मैं स्वागत कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम देखिए, एक घंटा का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा समय कम होगा, लेकिन आज मैं खास तौर पर एक बहुत ही, जैसे हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हैं और आप जानते हैं कि एक जो, कैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूं, डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा, यानी कि हमारे नाना पाटेकर जी अब हमारे साथ नहीं रहे। ही वॉज वन ऑफ माई बेस्ट एक्टर्स। उसका जो डिलीवरी हुआ करता था डायलॉग वगैरह, और सच में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और आज उनका मैं कुछ ट्रिब्यूट पे करना चाहूँगा। और नाना पाटेकर जी हु पास्ड अवे ऑन 8 अक्टूबर 2026 एट द एज ऑफ 75, born on 1st January 1951 in Maharashtra, Nana Patekar built an extraordinary career in Indian cinema spanning nearly 50 years. He was best known for his powerful performance and distinctive dialogue delivery, jaise maine kaha, in films such as Parinda, Krantivir, aapko to yaad hoga, Tiranga, Ab Tak, Chappan, एंड वेलकम में भी थे वो। विदाउट हीज करियर ही रिसीव्ड 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री इन 2013। बियॉन्ड एक्टिंग, नाना पाटेकर वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क थ्रू द नाम फाउंडेशन। जी हाँ, फाउंडेशन का नाम था नाम, विच ही को फाउंडेड। ही हेल्प्ड स्ट्रगलिंग फार्मर्स एंड फैमिलीज अफेक्टेड बाई ड्राउट इन महाराष्ट्र। Nana Patekar will be remembered not only for his remarkable contribution to Indian cinema, but also for his compassion and service to those in need. Chaliye, on behalf of Radio Bizwani 1701 AM, we extend our heartfelt condolences to his family, friends and admirers around the world. May his soul rest in peace. Om Shanti. Ji haan, dosto. Aur aage badhte hue, उनका जो हिस्ट्री है, क्या क्या किया इन्होंने, ये मैंने कुछ निकाला हूँ जगह जगह से, और उम्मीद है आपको, आप भी देख लिए होंगे, बट लेकिन चलो शायद नहीं देखे होंगे, तो आपके लिए शुरुआत करता हूँ दोस्तों, लीजिए सुनिए।
1: दोस्तों, जिस कलाकार ने अपनी सादगी, दमदार अदाकारी और बेबाक अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया, आज उनके जाने के बाद एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। कहा जा रहा है कि नाना पाटेकर ने जिंदगी में भले ही कभी दौलत और शानो शौकत का दिखावा नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने आखिर कितनी संपत्ति बनाई थी? क्या वाकई उनका करोड़ों का साम्राज्य था? और अगर था तो उनके जाने के बाद उस पूरी संपत्ति का असली वारिस कौन होगा? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सादगी को अपनी पहचान बनाया, उसके पीछे छोड़ी गई विरासत को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर एक साधारण जिंदगी जीने वाले नाना पाटेकर ने अपनी मेहनत से कितनी दौलत खड़ी की थी? उनकी संपत्ति में क्या क्या शामिल है, और उनके बाद कानूनी तौर पर इस विरासत पर किसका हक बनता है? आज हम आपको नाना पाटेकर की जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सादगी के पीछे छिपी ये कहानी आखिर कितनी बड़ी थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब नाना पाटेकर का नाम कोई नहीं जानता था, जब वह सिर्फ विश्वनाथ पाटेकर नाम के एक बेहद साधारण और दुबले पतले लड़के थे जिनके सिर पर बचपन में ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके परिवार की माली हालत उस वक्त पूरी तरह बिखर गई जब उनके पिता दिनकर पाटेकर का टेक्सटाइल का कारोबार एक करीबी रिश्तेदार के धोखे की वजह से डूब गया। घर में दाने दाने के लाले पड़ गए और परिवार पर इतना भारी कर्ज चढ़ गया कि लेनदार रोज दरवाजे पर आकर खड़े होने लगे। उस वक्त नाना जी की उम्र महज 13 साल थी, जिस उम्र में बाकी बच्चे खेलते कूदते और स्कूल की किताबों में खोए रहते हैं, उस कच्ची उम्र में नाना पाटेकर को पेट की भूख मिटाने और परिवार को सहारा देने के लिए मुंबई की तपती सड़कों पर निकलना पड़ा। वो रोज सुबह उठकर मीलों पैदल चलकर काम तलाशते थे, क्योंकि जेब में बस का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। उस बेहद कठिन दौर में उन्होंने मुंबई के जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला तो ले लिया, लेकिन फीस और खर्चे के लिए पैसे कहां से आते। इसलिए उन्होंने कमर्शियल आर्टिस्टों के साथ मिलकर सड़कों पर सिनेमा के पोस्टर और दीवारों पर चूना पोतने का काम शुरू किया। तपती धूप में घंटों खड़े रहकर वो बड़ी बड़ी दीवारों पर फिल्मों के होर्डिंग्स पेंट किया करते थे। हाथों में ब्रश और पेंट की बाल्टी थामे जब वह दिन भर पसीना बहाते, तब जाकर महीने के आखिर में उन्हें सिर्फ 35 रुपए की मामूली पगार मिलती थी। सोचिए, महीने के 35 रुपए यानी 1 रुपए से कुछ ही ज्यादा की दिहाड़ी। इस मामूली कमाई में वह किसी तरह एक वक्त सूखी रोटी और चना खाकर दिन गुजारते थे। कई रातें ऐसी भी बीतीं जब पेट में सिर्फ पानी की घूंट भरकर उन्हें खाली पेट फुटपाथ या किसी शेड के नीचे सोना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा, बल्कि उस भयंकर गरीबी ने उनके भीतर ऐसी जिद और आग पैदा कर दी जिसने आगे चलकर उनकी पूरी तकदीर बदल दी। पेंटिंग के साथ साथ नाना पाटेकर का रुझान नाटकों और थिएटर की तरफ बढ़ने लगा। वो मराठी रंगमंच पर छोटे छोटे रोल करने लगे। रिहर्सल के लिए कई किलोमीटर पैदल जाते थे, क्योंकि थिएटर की दुनिया में भी शुरुआत में पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ हुनर तराशने का मौका मिलता था। कई सालों की बेइंतहा रगड़ाई और मंच पर अपनी जान फूंक देने के बाद उन्हें पहली बार एक सरकारी थिएटर ग्रुप में नियमित कलाकार के तौर पर शामिल किया गया, जहां उन्हें महीने के लगभग 750 रुपए मिलने लगे। यह वो दौर था जब उन्होंने पहली बार राहत की सांस ली कि अब कम से कम दोनों वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मंच पर उनकी कड़क आवाज, आंखों की गहराई और डायलॉग बोलने का नेचुरल अंदाज इतना जबरदस्त था कि सामने बैठा हर दर्शक उनके सम्मोहन में बंध जाता था। रंगमंच ने उन्हें वो धार दी जिसने आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। साल 1978 में जब मुजफ्फर अली की फिल्म गमन बनी, तो नाना पाटेकर को पहली बार कैमरे का सामना करने का मौका मिला। रोल छोटा था, फीस भी मामूली थी, लेकिन पर्दे पर उनका गंभीर चेहरा निर्देशकों की नजरों में चढ़ गया। इसके बाद उन्होंने मराठी फिल्मों और हिंदी सिनेमा के छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में बिना थके काम जारी रखा। वो दौर ऐसा था जब उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए कई सालों तक साइड रोल्स और कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा। साल 1988 में मीरा नायर की मशहूर फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया, जिसे देखकर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स दंग रह गए। लेकिन उनकी किस्मत का सबसे बड़ा ताला खुला साल 1989 में, जब विधु विनोद चोपड़ा की क्लासिक फिल्म परिंदा रिलीज हुई। गैंगस्टर अन्ना सेठ का वह खतरनाक किरदार निभाकर नाना पाटेकर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया। उस एक रोल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उसी साल उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। परिंदा की भारी कामयाबी के बाद नाना पाटेकर की फीस और डिमांड दोनों आसमान छूने लगी। जो प्रोड्यूसर्स कभी उन्हें मिलने का समय तक नहीं देते थे, अब उनके दरवाजे पर चेकबुक लेकर लाइन लगाने लगे। 90 के दशक में आई क्रांतिवीर, तिरंगा, अग्निसाक्षी और प्रहार जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के बड़े और महंगे ए लिस्ट एक्टर्स की कतार में ला खड़ा किया। क्रांतिवीर के लिए जब उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, तो उनकी मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ गई। जिस इंसान ने जिंदगी की शुरुआत 35 रुपये के महीने से की थी, वह अब एक एक प्रोजेक्ट के लिए लाखों और फिर करोड़ों में बात करने लगा था। हाल के कुछ सालों की बात करें तो नाना पाटेकर अपनी चुनिंदा फिल्मों जैसे हाउसफुल सीरीज, वेलकम बैक और अपने हालिया प्रोजेक्ट्स के लिए प्रति फिल्म लगभग 2 से 3 करोड़ की फीस चार्ज कर रहे थे। उन्होंने कभी अंधाधुंध फिल्में साइन नहीं की, बल्कि अपनी शर्तों पर काम किया और ब्रांड एंडोर्समेंट की लंबी कतारों को ठुकराकर चुनिंदा काम में ही मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार किया। ट्रेड एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की माने तो अपनी 4 दशकों से ज्यादा लंबी फिल्म जर्नी में नाना पाटेकर ने फिल्मों की फीस अपने प्रोडक्शन हाउस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए लगभग 50 से 80 करोड़ की कुल नेटवर्थ खड़ी कर ली थी। यह आंकड़ा ऐसे कलाकार के लिए काफी बड़ा है जिसने बिजनेस की दुनिया में कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाया। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस और हैरानी की बात यह है कि इस 50 से 80 करोड़ के साम्राज्य में उनके पास असल में कौन कौन सी जमीनें थीं? वो कौन सा फार्म हाउस था जहां वह जिंदगी के सबसे सुकून भरे पल बिताते थे, और मुंबई से लेकर गोवा तक फैली उनकी प्रॉपर्टीज की असली कीमत क्या है? जब वह इतने बड़े करोड़पति बन चुके थे तो अपनी इस दौलत को कहां और कैसे खर्च करते थे। जब आप नाना पाटेकर के पूरे रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को करीब से देखेंगे तो सबसे बड़ा झटका उनके मुंबई वाले घर को देखकर लगेगा। आज जहां बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा एक्टर बांद्रा या जुहू में करोड़ों के सी फेसिंग पेंट हाउस और आलीशान बंगले खरीदता है, वहीं नाना पाटेकर ने पूरी जिंदगी मुंबई के अंधेरी वेस्ट वाले एक साधारण से 1 BHK फ्लैट में गुजार दी। लगभग 750 स्क्वायर फीट का यह छोटा फ्लैट उन्होंने कई दशक पहले करीब 1 लाख रुपए में खरीदा था। आज के रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से इसकी कीमत करीब 3 करोड़ आंकी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 50 से 80 करोड़ का मालिक होने के बाद भी नाना जी ने कभी उस फ्लैट को छोड़कर किसी बड़े महल में जाने की नहीं सोची। उनके घर में कोई फैंसी झूमर या इटालियन मार्बल नहीं था, बल्कि जमीन पर बिछी चटाई, साधारण लकड़ी की कुर्सियां और किताबों की एक छोटी अलमारी थी। वह अपने करीबियों से कहा करते थे कि इंसान को सोने के लिए सिर्फ 6 फीट की जगह चाहिए, फिर इतना बड़ा दिखावा और झूठी शान किस काम की। मुंबई के इस साधारण फ्लैट के बिल्कुल उलट नाना पाटेकर का दूसरा आशियाना गोवा के डोना पावला इलाके में मौजूद था, जो थोड़ा मॉडर्न और खुले स्पेस वाला बनाया गया था। समंदर की ठंडी हवाओं के करीब बना यह सुंदर रेजिडेंस उनकी पसंदीदा सुकून की जगह थी, जहां वह शहर के शोर शराबे, बॉलीवुड की भागदौड़ और चकाचौंध से दूर जाकर कई हफ्ते शांति से वक्त बिताते थे। इस खूबसूरत घर की बनावट में भी सादगी और हरियाली का खास ख्याल रखा गया था, जिसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू कई करोड़ रुपए आंकी जाती है। लेकिन इन सब प्रॉपर्टीज में सबसे खास और नाना पाटेकर की रूह के सबसे करीब जगह थी पुणे के खड़कवासला इलाके के पास बना उनका 27 एकड़ में फैला विशाल फार्म हाउस। ये कोई आम फिल्मी फार्म हाउस नहीं था जहां सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियां और ग्लैमर महफिलें जमती हों, बल्कि पूरी 27 एकड़ की हरी भरी जमीन खेती की मिसाल थी। इस फार्म हाउस के अंदर करीब 7 कमरे बने हुए हैं, लेकिन नाना पाटेकर का ज्यादातर वक्त उन कमरों में बैठने के बजाय खेती की गीली मिट्टी में बीतता था, जहां वह सुबह सूरज उगने से पहले ही पहुंच जाया करते थे। इस 27 एकड़ के फार्म हाउस में नाना पाटेकर खुद सुबह 5 बजे उठकर ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थाम लेते थे। वह अपने हाथों से फावड़ा चलाते थे, गेहूं, धान और तरह तरह की ताजी हरी सब्जियों की बुवाई करते थे। उनके फार्म पर काम करने वाले मजदूरों और किसानों के साथ वह जमीन पर चटाई बिछाकर एक ही थाली में दोपहर का खाना खाते थे। यहां तक कि इस फार्म से निकलने वाली फसल और सब्जियों की बिक्री से जो भी मुनाफा आता था, नाना जी उसमें से एक भी रुपया अपने निजी बैंक खाते में नहीं रखते थे, बल्कि पूरा पैसा पसीना बहाने वाले गरीब किसानों और मजदूरों के परिवारों में खुशियों के साथ बांट दिया करते थे। आज के समय में इस 27 एकड़ के प्राइम फार्म हाउस की बाजार कीमत 25 से 30 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा पुणे के बेहद महंगे लॉ कॉलेज रोड पर भी उनका एक शानदार फ्लैट मौजूद है, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए है। लेकिन इतनी बेशुमार दौलत और जमीनों के मालिक होने के बावजूद उनका रहन सहन हमेशा एक फकीर जैसा ही रहा। जब बात गाड़ियों और कार कलेक्शन की आती है तो वहां भी नाना पाटेकर ने बॉलीवुड के दिखावटी नियमों को तोड़कर रख दिया। जहां दूसरे फिल्मी सितारे रोल्स रॉयस, फेरारी, बेंटले और लैम्बोर्गिनी जैसी करोड़ों की विदेशी सुपरकारों के काफिले में घूमते हैं, वहीं नाना पाटेकर को अपनी दशकों पुरानी क्लासिक महिंद्रा जीप CJ4 ड्राइव करने में सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। वह अक्सर उसी पुरानी खुली जीप में साधारण शर्ट पहनकर मुंबई और पुणे की सड़कों पर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के निकल जाते थे। इसके अलावा उनके पास रोजमर्रा के लंबे सफर के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो थी, जिसे वह कई सालों से अपनी पसंदीदा गाड़ी मानकर चला रहे थे। हालांकि परिवार की लंबी यात्राओं और सहूलियत को देखते हुए बाद में उनके गैराज में एक ऑडी Q7 भी शामिल हुई, लेकिन नाना जी ने खुद को हमेशा उसी पुरानी जीप और साधारण गाड़ियों तक सीमित रखा। वह कहते थे कि गाड़ी का काम सिर्फ इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ना कि अपनी अमीरी का तमाशा बनाकर लोगों को नीचा दिखाना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर नाना पाटेकर ना तो महंगे महलों में रहते थे, ना करोड़ों की गाड़ियों का शौक पालते थे और ना ही ब्रांडेड विदेशी कपड़ों पर फिजूल खर्ची करते थे, तो फिर उनकी फिल्मों से आने वाली करोड़ों की फीस और पूरी कमाई जाती कहां थी। इसका सबसे बड़ा और दिल छू लेने वाला जवाब मिलता है साल 2015 की उस दर्दनाक घटना से, जब महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में भयंकर सूखे की वजह से सैकड़ों लाचार किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। अखबारों और टीवी पर गरीब किसानों के उजड़ते घरों की खबरें देखकर नाना पाटेकर का दिल अंदर तक रो पड़ा। उन्होंने बिना किसी कैमरे और मीडिया पब्लिसिटी के चुपचाप अपने बैंक से पैसे निकाले और सीधे पीड़ित किसान परिवारों की चौखट पर पहुंच गए। उन्होंने खुद अपने हाथों से विधवाओं और बेसहारा बच्चों को 15-15 हजार के चेक बांटे ताकि वे साहूकारों के भारी कर्ज से बाहर निकल सकें और अपने मासूम बच्चों का पेट पाल सकें। जब नाना पाटेकर को एहसास हुआ कि सिर्फ कुछ चेक बांटने से पूरे राज्य के किसानों का दर्द खत्म नहीं होगा, तो उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और मशहूर मराठी एक्टर मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर नाम फाउंडेशन नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत की। इस फाउंडेशन को शुरू करने के लिए नाना जी ने अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई और फिल्मों से मिलने वाली फीस का 90% से ज्यादा हिस्सा सीधे इस ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफर कर दिया। नाम फाउंडेशन के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के कई सूखा प्रभावित गांवों को सीधे गोद लिया। अपनी जेब के पैसों से बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें खरीदकर नदियों और पुरानी नहरों को गहरा करवाया ताकि बारिश की एक एक बूंद पानी रुक सके। हजारों चेक डैम बनवाए। बेसहारा किसान परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों सिलाई मशीनें बांटी और अनाथ बच्चों की पूरी पढ़ाई और स्कूल का जिम्मा अपने सिर ले लिया। नाना पाटेकर ने अपनी गाढ़ी कमाई को बैंक के बंद लॉकरों में रखने के बजाय सीधे लाखों किसानों और मजदूरों की जिंदगी संवारने में लगा दिया। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक नाना पाटेकर ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह समाज सेवा और गरीब किसानों के आंसू पोंछने में लगाया, लेकिन इसके बावजूद उनके बैंक खातों, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, फार्म हाउस और सिक्योरिटीज को मिलाकर आज भी करोड़ों रुपए की भारी भरकम निजी संपत्ति मौजूद है। अब जब नाना पाटेकर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं, तो पूरे देश की निगाहें इसी सवाल पर टिक गई हैं कि इस बची हुई करोड़ों की दौलत और जायदाद का क्या होगा। वो कौन सा इंसान है जिसके नाम नाना पाटेकर अपनी पूरी वसीयत और कानूनी हक सौंप कर गए हैं? क्या उनकी पूरी प्रॉपर्टी परिवार को मिलेगी, या फिर इसमें कोई ऐसा चौंकाने वाला लीगल मोड आने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी? इस बड़े सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें नाना पाटेकर की निजी जिंदगी के उन अनकहे पन्नों को पलटना होगा जो अक्सर चकाचौंध के पीछे दबे रहे। नाना पाटेकर का पारिवारिक जीवन किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा उतार चढ़ाव और गहरे जख्मों से भरा रहा। साल 1978 में उन्होंने नीलकंती पाटेकर से शादी की थी, जो उस वक्त एक बैंक में नौकरी करती थी और खुद भी थिएटर से जुड़ी एक सुलझी हुई महिला थी। दोनों की जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद विचारों का तालमेल ना बैठने की वजह से दोनों अलग रहने लगे। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक दूसरे से अलग रहने के बावजूद नाना पाटेकर और नीलकंती जी ने कभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया। दोनों के बीच एक अनकहा आपसी सम्मान हमेशा बना रहा और नाना जी अपनी पत्नी की हर छोटी बड़ी जरूरत और सम्मान का पूरा ख्याल रखते रहे। लेकिन इस रिश्ते के बीच नाना पाटेकर की जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। उनकी शादी के बाद उनके घर में पहले बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम दुर्वासा रखा गया था। दुर्वासा बचपन से ही कुछ गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा था और महज 2.5 साल की नन्ही उम्र में ही वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गया। उस मासूम बच्चे के चले जाने का दर्द नाना पाटेकर के दिल पर ऐसा गहरा घाव कर गया जो उनके आखिरी दिनों तक नहीं भर सका। वह कई महीनों तक गहरे सदमे में रहे और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। उस हादसे ने नाना पाटेकर के सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें समझ आ गया कि इस दुनिया में दौलत, शोहरत और रिश्ते कुछ भी हमेशा के लिए टिकने वाले नहीं हैं। इसी दर्द ने उनके भीतर के उस फकीर को जन्म दिया जिसने आगे चलकर दूसरों के आंसू पोंछने को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बना लिया। दुर्वासा के जाने के कई सालों बाद उनके घर में छोटे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मल्हार पाटेकर रखा गया। मल्हार नाना पाटेकर के जिगर का टुकड़ा थे और नाना जी ने अपनी पूरी दुनिया अपने इस बेटे के इर्द गिर्द समेट ली थी। मल्हार ने पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्लैमर की अंधी दौड़ में कूदने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद किया। उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी और नाना पाटेकर के प्रोडक्शन हाउस के तमाम प्रोजेक्ट्स और काम को समझदारी से संभालना शुरू किया। मल्हार स्वभाव से अपने पिता की तरह ही शांत, सुलझे हुए और सादगी पसंद इंसान हैं, जो कभी किसी फिल्मी पार्टी या लाइमलाइट का हिस्सा नहीं बनते। वो हमेशा अपने पिता की ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहे, चाहे वह फिल्मों का सेट हो या गांव देहात में किसानों की मदद का कोई मिशन। नाना जी जब भी मुंबई से बाहर होते थे तो उनके हर कानूनी और पर्सनल काम की जिम्मेदारी केवल मल्हार संभालते थे। अब जब जो कभी किसी फिल्मी पार्टी या लाइमलाइट का हिस्सा नहीं बनते वो हमेशा अपने पिता की ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहे, चाहे वह फिल्मों का सेट हो या गांव देहात में किसानों की मदद का कोई मिशन। नाना जी जब भी मुंबई से बाहर होते थे तो उनके हर कानूनी और पर्सनल काम की जिम्मेदारी केवल मल्हार संभालते थे। अब जब नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे तो सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह उठता है कि उनकी छोड़ी हुई लगभग 50 से 80 करोड़ की इस भारी भरकम संपत्ति का असली वारिस कौन बनेगा। भारतीय उत्तराधिकार कानून यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक अगर किसी इंसान की मौत बिना वसीयत के होती है तो उसकी संपत्ति पर सबसे पहला हक उसकी पत्नी और बच्चों का यानी क्लास वन लीगल हेयर्स का होता है। इस कानूनी नियम के अनुसार नाना पाटेकर की पत्नी नीलकंती पाटेकर और उनके बेटे मल्हार पाटेकर ही उनकी तमाम चल और अचल संपत्तियों के सबसे पहले और स्वाभाविक कानूनी हकदार बनते हैं, जिसमें उनका अंधेरी वाला फ्लैट, गोवा का सुंदर घर, पुणे की जमीनें, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर मार्केट के तमाम इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू उनकी संपत्ति का वह हिस्सा है जिसे नाना पाटेकर ने अपने जीते जी किसानों और समाज के नाम समर्पित कर दिया था। सूत्रों और उनके करीबी वकीलों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि नाना पाटेकर ने अपनी वसीयत का ड्राफ्ट काफी समय पहले ही सोच समझकर तैयार करवा लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। जानकारों का मानना है कि नाना जी अपनी वसीयत में निजी प्रॉपर्टीज का एक बड़ा हिस्सा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट नाम फाउंडेशन के नाम एक लीगल ट्रस्ट बनाकर छोड़ गए हैं, ताकि उनके जाने के बाद भी महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित किसानों को मिलने वाली मदद रुकने ना पाए। उनका 27 एकड़ का विशाल खड़कवासला फार्म हाउस भी संभवतः इसी ट्रस्ट की निगरानी में रहेगा, ताकि वहां से होने वाली खेती और कमाई का इस्तेमाल बेसहारा परिवारों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए लगातार होता रहे। इस तरह अगर पूरी तस्वीर साफ तौर पर देखें तो नाना पाटेकर की इस अकूत विरासत के दो बड़े हिस्सेदार सामने आते हैं। एक तरफ उनके बेटे मल्हार पाटेकर हैं, जो परिवार के नाम पर उनके प्रोडक्शन हाउस, फिल्मों की रॉयल्टी और निजी संपत्तियों के आधिकारिक वारिस बनकर उनके पारिवारिक नाम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नाम फाउंडेशन और लाखों गरीब किसान परिवार हैं, जिन्हें नाना पाटेकर ने जीते जी अपनी संतान की तरह माना था और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उनके नाम कर दिया। मल्हार पाटेकर को ना सिर्फ उनके बैंक बैलेंस का जिम्मा संभालना होगा, बल्कि अपने पिता के उस अधूरे मिशन को भी आगे बढ़ाना होगा जिसमें किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाना पहली प्राथमिकता थी। सच तो यह है कि नाना पाटेकर जैसे महान और निस्वार्थ इंसान सदियों में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के दर्द को बांटने में खपा दी और जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो अपने पीछे पैसों से ज्यादा करोड़ों लोगों की दुआएं और एक ऐसा नाम छोड़ गए जो हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों,
0: तो दोस्तों, दैट्स व्हाई इज वन इन अ मिलियन। इसीलिए जितने भी लोग से मैं बात करता हूं सब बोलते हैं उनकी तरह एक्टर नहीं आएगा। ग्राउंडेड टू द अर्थ, उनका पैर जमीन पर हमेशा रहा है। और अगर और किसी को देखे आप तो क्या बताएं हम। चलो, एक इनका जो डायलॉग डिलीवरी बहुत बहुत अच्छा हुआ करता था दोस्तों। कई डिफरेंट क्या बोलते हैं जॉइनर है इसके पास, और जो एक बहुत डायलॉग जो फेमस हुआ था शायद क्रांतिवीर में हुआ था।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को। सब साले मुर्दे जिंदा लाशे, किसे जगाती हो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या है? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना। जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो, मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला।
1: ये फांसी नहीं हो सकती।
2: जी हाँ दोस्तों, वेरी पावरफुल डायलॉग इन्होंने दिया था। और एक बार इन्होंने किस एक इंटरव्यू में, शायद आपको माधुरी दीक्षित के लिए जो उन्होंने एक डायलॉग कहा था, वो जो शायरी, चलो मैं आपको सुनवाता हूँ। ऑन द लाइटर साइड सुनते हैं दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं।
3: माधुरी के लिए मैं एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूँ। जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था इस मैं एक्टर हूं, उसमें डायरेक्टर हूं नाटक का, और वो सोचता है कि माधुरी है वहां, और वो सोचते हुए वो कहता है, माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भुलाने में कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन, ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजार है तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यू ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर छिन में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम, मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें। देवी हो तुम मेरे लिए, मेरे लिए भगवान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो,
4: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। ए कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगर, ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो, तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा, यू ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम, मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो।
2: जी हाँ दोस्तों, ग्रेट डिलीवर, बहुत अच्छा उनका डायलॉग हुआ करता था। एक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो क्यों मैं इसको इतना पसंद करता हूँ, शायद इसमें भी कुछ मीनिंग है। फिल्म यशवंत, आपको याद है 1996 मूवी यशवंत, उसका एक डायलॉग है, और डायलॉग कौन सा है दोस्तों? एक मच्छर।
5: मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।

ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में समता की भावना आ रही है, इसलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने हुए कुत्ते हमें ही काटते हैं, हमारी ही बोटी आपस में बांटते हैं। अमानुष गंध से भरी इनके आवाज से नंगे रास्ते कांपते हैं। कल पैदा हुए बच्चे एक सांस लेते हुए हाँ

गिरो तो उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिर के भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, जमीन के तह से मिलके भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता। लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है किसके पास, क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को इजड़ा

अरे दोस्तों, आई डोंट थिंक देयर इज अनदर पर्सन दैट कैन डिलीवर डायलॉग लाइक हिम. उससे पूछा गया कि हाउ डू यू डू इट, एक्टिंग इतना अच्छा करते हुए कैसे होता है सब. उन्होंने कहा कि मैं पहले अपने आप को अपने अंदर से निकाल देता हूँ, देन आई पुट दैट करेक्टर इन साइड मी जिसको मुझे प्ले करना है, एंड इट कम्स ऑटोमेटिकली. क्या बात है दोस्तों. चलिए एक गीत, राजकुमार और नाना पाटेकर, फिल्म तिरंगा का गीत है, 1973 मूवी का गीत है दोस्तों, पीले पीले ओम मोरे राजा.

0: इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है।
1: नाना फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इंप्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है।
2: हाँ, बिल्कुल।
1: चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ा करता है।
2: वो स्क्रीन का, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। मतलब वो रोल के लिए, बाकी गुस्सा तो होता हूं।
1: लेकिन उस गुस्से की वजह से एक दो डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को ये रोल ना दिया जाए।
2: बिल्कुल सही है।
1: ए वेडनेसडे का रोल आपको इसलिए नहीं मिला?
2: बिल्कुल, मुझे नसीर ने बात बताई है कि नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था। नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था तो पांडे ने कहा नहीं यार, वो कहीं मार खाना पड़ेगा तो मैं नहीं मिला। तो मैं बाद में मैं पांडे को मिला हाल में, तो मैंने कहा ऐसे मत कर यार। तो मतलब थोड़ा गुस्सेल हूं लेकिन मैं पागल नहीं हूं यार।
1: एक और किस्सा मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो। हाँ? लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे।
2: अब वो हाथ पैर हिला रही थी, मैं बवा या कहा।
1: इसलिए जो राइटर है वो भी आपके लिए ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि अब याद है आ गए मौत का तमाशा देखने।
2: हाँ। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सीन कर रहे थे उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अस्पताल में था और मेहुल कुमार ने तकरीबन 2-3 हजार का ऑडियंस बुलाया था। अब मैं ना आऊं वहां जाऊं तो इतना पेमेंट करना पड़ता, तो मेहुल कुमार हॉस्पिटल में आया नाना, तो मैंने कहा चल चलते हैं, अब सीन लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा एक काम कर, एक ही वक्त 5 कैमरे लगा दे और एक तो कैमरा चलते रहना चाहिए, तो मैगजीन्स तैयार रखना, मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोलने वाला हूं। और वैसे सीन हुआ है, वो पहले लिखे हुए नहीं थे।
1: ये बहुत लंबा डायलॉग है। हाँ। पूरा आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका दोगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी आंखें, आपको याद है?
2: हाँ। याद नहीं।
1: आप सुनना चाहते हैं?
2: ये सच सच में ये याद नहीं है अभी।
1: अच्छा, इनका कहना है कि देख के अगर इसमें से एक दो लाइनें भी आप बोलते हैं।
2: चल मैं आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी और यहीं लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते हुए चले जाओगे, खाना खाओगे और फिर से सो जाओगे। तो नामर्दान की बुजदिली एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोशी में खामोशी से देखे। कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें, बस हो गया। मुझे मालूम नहीं, वजूद फिल्म देखी है किसी? वजूद एक फिल्म थी जिसमें एक बेहतरीन कविता जैसे लिखी थी जावेद साहब ने, अख्तर साहब ने, और माधुरी के लिए मैं एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूं। जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था इस
3: चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा आगे करेंगे क्योंकि ये वाला मैंने पहले बजा दिया था
2: उसकी वजह से 25 साल पहले।
3: तो
2: मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम, मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताओ मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए, मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। सुनो, कमाल की बात है कि उसकी जो लय है, छंद है, उसकी वजह से 25 साल पहले 20 साल पहले जो लिखा हुआ है वो जहन से निकलता नहीं, उसका एक रिदम है।
1: छंद की वजह से नहीं निकलता या माधुरी की वजह?
2: वो तो है ही, वो तो अध्यारत है, वो तो होना ही है।
1: लेकिन माधुरी के लिए इतनी अच्छी बातें, और मैंने सुना कि प्रकाश शाह जब राजनीति के सेट पर थे उन्होंने आपसे कहा गाना गाने के लिए, तो उनको इतना डांटा कि उनकी आंख से आंसू निकल गए।
2: किसे? मैंने प्रकाश को डांटा?
1: अखबारों में तो ये छपा।
2: मैं अखबार ज्यादातर पढ़ता नहीं।
1: और ये भी छपा कि अनुराग कश्यप को आपने एक सीन के दौरान बड़ी जोर से थप्पड़ मारा एक्टिंग करते हुए, और फिर आपने कहा कि देखा कितनी जोर से मारा, बहुत शाना समझते अपने आप को।
2: ये ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी आरोप लगाते हैं, 20 साल से ऐसे आरोप लगाते हुए आए हैं।
1: लोग समझते हैं कि नाना पाटेकर असली जिंदगी में परिंदा के उस खलनायक जैसा है जो बार बार अपना माथा पीटता है।
2: पहला नेशनल अवार्ड वहां मिला था सर पीटने के बाद।
1: लेकिन असली जिंदगी में भी सर पीटते हैं या सिर्फ
2: दूसरों का?
1: और जब ये अवार्ड मिला था तो मैंने सुना कि स्टेज पर जब आप गए अवार्ड लेने के लिए तो आप बहुत जोर जोर से रोए।
2: नहीं तो मैं क्यों रो भाई? वो मेरा कॉम्पिटिटर था दूसरा, जिसको नहीं मिला वो रो रहा था उस वक्त। लेकिन परिंदा मुझे लगता है कि वो एक परफॉर्मेंस, कुछ बातें कुछ फिल्में ऐसी होती है कि हो जाती है, वहां तुम कुछ करते नहीं, अगल बगल के लोग इतना कुछ करते हैं कि उसकी एक रिएक्शन हो जाती है। वैसे ही मैं 2611 का भी वही हुआ है। अगर कोई एक्टर कहता है कि ये मैंने किया तो मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि उसके लिए बहुत सी बातें निर्भर होती है। मतलब मेरा को आर्टिस्ट है, राइटर है, कैमरामैन है, डायरेक्टर है, और सब कुल मिला के जब हो जाता है तब जाके मजा आता है। नहीं तो मैंने मैंने मैंने मैंने किया ऐसे नहीं होता। मैं खामोशी का जो है रोल, संजय भंसाली ने इतना बेहतरीन उसको पहले ही लिख के रखा था, तो उसके बाद जाके सिर्फ करना है तो बड़ी आसानी होती है। हाँ ये बात जरूर है कि पहले 14 महीने हम वो भाषा सीख रहे थे, ताकि
1: जो डेफ एंड डम की जो भाषा है,
2: जो उसमें जो बच्चे के मेरा काम किया था उसकी माँ और बाप दोनों डेफ डम और डेफ, तो उसकी माँ ने हमको सिखाया। तो ये बच्चा जो है माँ बाप को क्या लगता है वो हमको समझाता था, क्या वो ये कह रही है, वो बीच में उनके साथ तो वो उधर, तो देखने के बाद इतना बुरा लगता था कि माँ और बाप दोनों गूंगे हैं और ये बच्चा वो कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ।
1: परिंदा में मैंने सुना कि जो एक जलने वाला सीन था वो इस कदर हुआ कि आप बिल्कुल मरते मरते बचे।
2: मैं जल गया, फिर एक साल तक मैं शूटिंग नहीं कर पाया। मैं 60 दिन अस्पताल में था, एक वो जो झूले पे जो है मैं जल रहा हूँ वो वाकई मैं जल रहा था। और
1: लोग सोच रहे थे आप एक्टिंग कर रहे हैं।
2: नहीं, प्रॉब्लम वो है, एक्टिंग तो है ही, लेकिन वो झूला है, इस तरफ भी आग थी उस तरफ भी आग थी, यहां कहीं मैं कूदा और झूले पे लीप लेते हुए वो पैर फिसल गए, लेकिन कांच है, बहुत सी बोतलें फेंकी थी वहां तो वो कांच थे, और वहां से उस तरफ से वो जाकी चिल्ला रहा था, नाना आर यू ओके? तो मैंने अपनी तरफ देखा तो मेरी वो सब ये स्किन जो है मेरे चप्पल पे गिर गई थी, तो मैंने कहा नो आई एम नॉट ओके। तो फिर जाके बुझाया, फिर वहां डॉक्टर थे इमीडिएट काट के, फिर बाद में नानावटी में अस्पताल में गए।
1: काफी समय अस्पताल में रहना पड़ा,
2: 60 दिन, फिर काफी ये कुछ था ही नहीं, सब निकल गया था, ग्लव्स जैसे निकलते हैं वैसे।
1: नाना हमारी दुआएं हैं कि आपको आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, आपकी उम्र बहुत हो, आप लोगों का मनोरंजन करते रहें।
2: वैसे भी वैसे जलते ही रहते हैं यार, ये सच्ची आग से नहीं तो ये ऐसी जो चल रहा है हमारे इर्द गिर्द। दर्द तो होता है, फिल्मों के जरिए जितना कहने का मतलब कोशिश करेंगे उतने करेंगे, लेकिन जो होता है इर्द गिर्द घटता है उससे बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। हम तो बड़े खुशनसीब है कि हमारे पास माध्यम है, हमारी घुटन है, हम निकाल सकते हैं। जिनके पास कुछ है नहीं वो क्या करेंगे। मेरे पास ये अगर माध्यम नहीं होता तो मैं क्या करता? सच में कहता हूं कि मैं पागल हो जाता था, क्योंकि वो जो घुटन है वो निकाले कैसे हमारी बाहर। तो मुझे लगता है ये जो सफोकेशन है बच्चों का, आज के पीढ़ी का, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, उसको आउटलेट नहीं है, वो आउटलेट हमें चाहिए।
1: जब आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, रोल सेलेक्ट करते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं कि इस तरह की भावनाएं उसके अंदर उजागर हो, लोगों को सीखने का मौका।
2: मैं चेंज भी बहुत करता हूं, दखलंदाजी बहुत करता हूं, लेकिन उसमें मैंने कभी ये नहीं लिखा कि ये डायलॉग मैंने लिखे है या ये मेरा अपना है, हो जाता है उन्हीं को क्रेडिट। लेकिन इतने साल थोड़ा पढ़ता भी हूं, थोड़ा लिखता भी हूं, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि नहीं ये मैं कर पाऊंगा, कहीं गलत होता है तो मैं कह देता हूं। लेकिन ये मुझे भी बड़ी कोफ्त हो रही है इस वक्त, ये कल का भी हिस्सा जो मतलब वो वाकया हुआ हैदराबाद का, उसके पहले हुआ, अंदर कहीं छोटा होते जा रहा हूं, सिकुड़ रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ ठीक था कल तक, आज ऐसे क्यों हो रहा है? और ये वजह ये है कि आज मैं एक बाप होने के नाते मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं ऐसे कुछ इसमें चला गया तो, मतलब ये मैं नहीं, सभी बाप सोच रहे होंगे इसका हल। मुझे लगता है मैं यहां आया, अच्छा हुआ, थक गया था, मैं सोच रहा था कि जाऊं ना जाऊं, लेकिन मैं आया रजत, मैं सच कहता हूं मैं खुश हूं कि इस माध्यम से, इस माध्यम के जरिए मैं कुछ कह पाऊंगा, लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगर कोई गलत समझ रहा है मैं फिल्म प्रमोट करने आया हूं, तो वैसी बात नहीं, फिल्म चले ना चले वो उसका अपना मेरिट होगा, नहीं चले मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना करना था मैंने कर दिया। लेकिन ऐसे भी बात नहीं कि हारा हूं, मुझे लगता है इसमें से ही बच्चे निकलेंगे, कल इसमें से कोई यहां होगा, फिर वही बैटन हाथ में लेके फिर वो दौड़ेगा, रिले है ये और क्या।
1: पिछले 2 साल में हमने देखा है कि देश के नौजवान सड़कों पर निकले हैं, कई बार लीडरशिप के साथ, कभी बिना लीडरशिप के साथ, और उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय लगाया, और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया।
2: नहीं बिल्कुल करेंगे, आखिरकार ताकत तो हमारी यही है ना, हम तो फिर अभी थोड़े दिन के बाद आशीर्वाद के लिए ही रहेंगे ना और क्या, मतलब आप, मैं तो चलूंगा इनके साथ।
3: तो दोस्तों ये नाना पाटेकर पर ये प्रोग्राम किया था मैंने, सोचा कि चलो उनका जो सोच है, उनका डायलॉग है, थोड़ा आप तक पहुंचाऊं। आप में तो सब शायद कुछ लोग जो सुन लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो शायद आपको अच्छा लगे, और बस आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों प्रोग्राम आपने सुना, अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल्स, और जो आपने कहा, और कुछ लोग कुछ कहना चाहते थे लेकिन समय अभाव दोस्तों मैं ऐसा नहीं कर सका, माफ़ी चाहता हूं। तो चले दोस्तों, इसके बाद में आप हो जाएंगे फिरोज भाई के साथ, सुनेंगे प्रोग्राम, और फिर बाद में रोहित सिंह है और सुशीला है, और अभी क्या बोलते हैं शशि जोकन छुट्टी पर है, उनका प्रोग्राम नहीं सुन पाएंगे दोस्तों कुछ हफ्तों तक, लेकिन कल सुबह आप हो जाएंगे जी हाँ मेरे साथ और अमिता के साथ, तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, और आप सभी ने आज साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, है कि नहीं। आज हम यहाँ, कल मालूम नहीं कहाँ पर होंगे, खैर अपना ख्याल रखिएगा, और फिर मिलते हैं, कल मिलूँगा, और चलिए सुनते हैं फिरोज भाई के साथ प्रोग्राम। नमस्कार, खुदा हाफिज़।
4: एक दो दिन नहीं, हम आपके साथ हफ्ते में हर दिन चलते हैं, इसीलिए आप भी चलिए 79.1 ब्रिस वाणी के साथ।
5: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।
6: दिलों को झंकृत करें,
7: हवाओं

जी हाँ, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को पहली बार सुन रहे हैं तो याद रहे हर रविवार को 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक अपने यार दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम को सुनकर उत्फुल्लाएं। 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी जाता है, संगीत की जानकार को सुनने को जाता है, शायद फिरोज खान को सुनने को जी जाता है। आपको याद रहे दी अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड, दैट हिट्स ऑफ 90s, करीबन 11:30 या 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए हम पेश करेंगे। फिलहाल संगीत की जानकार में यादों के सफर के अंतर्गत आपके लिए एक खास ट्रीटमेंट। आप जैसे जानते हैं कि संगीत की जानकार के यादों के अंतर्गत हम पेश करते हैं कभी खुशबू, कभी आंसू, तो कभी नगमा, कभी खुशी, कभी गम, जो भी हो, लेकिन आज आपके लिए एक विशेष संग्रह। जी हाँ, टापू रिदम म्यूजिक, जिसको हम टांगे वाला म्यूजिक बोलते हैं, याद है ओपी नैयर ने इसको बहुत ही पॉपुलर किया था। टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टापू वाला म्यूजिक, टांगे वाला